0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आप जानना समझना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है या कॉलिंग होती है एचआर की आपके लिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी क्या डिमांड है, यानी कि रुपए पैसों की क्या डिमांड है। इसी से रिगार्डिंग आज मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही है जो हमारे साथ शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप के हेड हैं एचआर डिपार्टमेंट में, मिस्टर गौरव डिमरी जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आर्मी में देश की सेवा की है और लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और उसके बाद इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो गौरव सर, आपका सुनो श्रद्धा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, रियली एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म।
0: सर ये हमारा सम्मान है कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच आए। तो निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा कि एचआर का जो फील्ड है किस तरीके का फील्ड है, यहाँ फ्यूचर क्या है, और पहले तो आप इसके बारे में बताइए।
1: जहां तक एचआर की बात है, दिस इज एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस। सो टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, मशीनरी कहीं की कहीं अपग्रेड हो जाए, इवन इफ मैन हैज टू रीच द अदर प्लैनेट्स इन द गैलेक्सी, स्टिल दैट मैन हैज टू बी मैनेज्ड। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड एनी फील्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो लोग वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनका वेल बीइंग, उनकी करियर ग्रोथ, उनका डे टू डे रूटीन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक बहुत ही एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है एंड एबिलिटी एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट मैटर्स एंड यू आर एबल टू रियली इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड लाइफ्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड इवन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो दैट अपॉर्चुनिटी एन ऑल एनकम्पासिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड प्रोवाइड करती है।
0: जी जी गौरव सर, आप मुझे थोड़ा ये डिटेल में ये भी बताइए कि जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो किन किन खास बातों को आप ध्यान में रखते हैं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी इंटरव्यू के जाते वक्त।
1: देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन आई सपोज। सी द पॉइंट इज दैट सम टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिग्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। I would only say that today the requirements of a job are just not related to the academic degree. Academic degree is an outcome. आपने एक एग्जाम में किस प्रकार से उस दिन परफॉर्म किया।
0: जी।
1: Probably उसी एग्जाम में आप दो दिन पहले या पांच दिन बाद वही पेपर देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता।
0: Ups and downs हो सकते थे marks.
1: So that correct. So that outcome is one factor.
0: जी।
1: लेकिन what matters is more than that degree is your human qualities, your behavior, your conduct, your not only the knowledge of your subject but the knowledge of understanding the application of that subject. कि मैं उस पोस्ट पर बैठकर उस डिग्री की मदद से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो अ कैंडिडेट मस्ट अलाइन हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद हिज मेंटल मेकअप And his plan to contribute.
0: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपके दिल के आसपास कोई एक ऐसा खास गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, वही गाना हम प्ले करेंगे अपने लिसनर्स के लिए।
1: चूंकि इट्स यूनिवर्सिटी का चैनल है एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू इट, तो आई थिंक लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था। लक्ष्य
0: बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये गाना आपके प्रोफाइल को या यू कहें कि आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो लिसनर्स, यहाँ पर जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मैं जिंदगी में ऐसी शख्सियत आपको जब मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो वर्क नेचर है वो कैसा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव डिमरी जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बताई। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एक कैंडिडेट को हायर करते वक्त नो डाउट आपने जो बात बताई कि डिग्री मान्यता रखती है, लेकिन इतना भी नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अनुभव क्या है। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप मुझे पहला काम नहीं देंगे और अनुभव की बात करेंगे तो फिर वो मेरा अनुभव कहाँ से कैसे शुरू होगा। तो मैं अनुभव की ही बात करता हूँ कि अनुभव को आप कितना वरीयता देते हैं, या उस वक्त जो आपने कहा कि अगर वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से फेस कर पा रहा है, आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है और डिग्री में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं?
1: गगन जी, देखिए, एवरी जॉब कम्स विद अ जॉब रिक्वायरमेंट, और उसकी जॉब की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपीरियंस, इस ये डिग्री, दैट हैज टू मैच
0: जी।
1: लेकिन वो कोई भी कैंडिडेट जो उसको मैच करता है वो उसको इंटरव्यू रूम के डोर तक ले आता है। इंटरव्यू रूम के अंदर उसकी जो क्वालिटीज हैं
0: जी,
1: चाहे वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो और एबिलिटी टू एंगेज हो, वो बहुत मैटर करता है।
0: क्या बात?
1: क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री हैज गिवन द थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, बट एक टीम में काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कंपेटिटिवनेस लाने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए, एक ऑलराउंड पॉजिटिव एनवायरमेंट में काम करने के लिए एक कैंडिडेट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो मार्कशीट और डिग्री ने दिखा दी।
0: जी जी।
1: सो इन एन इंटरव्यू अ पर्सन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन व्हाट ही हैज थ्योरेटिकली लर्न, दैट हैज ब्रॉट हिम टू द इंटरव्यू,
0: राइट?
1: व्हाट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम हिम टू अदर्स एंड गेट अ सिलेक्शन इज हाउ he has evolved into leadership skills, contributed positively, achieved more than what is required, his ability to zealously work for his goals, that matters.
0: Sir, kabhi-kabhi aisa bhi hota hai ki is baat ka log galat maayne nikaal lete hain ki talkative hona bahut zaruri hai, baatuni hona bahut zaruri hai. To main samajhta hoon ki wo cheez alag hai aur jo aap bata rahe hain wo cheez alag hai.
1: Ji, ji. Absolutely. One has to, in minimal words, one can convey a lot.
0: क्या बात है।
1: सो इंटरव्यू के टाइम्स भी लिमिटेड होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको अपने बारे में इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत लंबा बताना है, बट
0: शॉर्ट
1: इन शॉर्ट टाइम फ्रेम यू कैन अचीव, एंड द इंटरव्यू पैनल्स आर जनरली वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन कम टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वालिटी एंड नॉलेज।
0: चलिए, यहाँ पर फिर एक ब्रेक आ रहा है जो कि म्यूजिकल ब्रेक है, और गाना जो आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे दिल के आसपास ये खूबसूरत गाना है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी, सो वन सॉन्ग विच रियली आई लिसन एट टाइम्स व्हेन आई टेक अ ब्रेक इज द सॉन्ग कबीरा फ्रॉम द मूवी जवानी है दीवानी, बिकॉज़ दैट आल्सो सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट्स मीनिंग।
0: रियली नाइस, आप जो गाने का सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर ही रहा है। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो आप कहीं जाएगा मत। एचआर का जो क्षेत्र है, एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब आप किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं जो कि आपकी वीडियो बना रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरी भी वीडियो बना लीजिए। बहुत हंसमुख चेहरा है, आप हंसते रहिए जनाब, मुस्कुराते रहिए। सो इंसान की मुस्कुराहट कनेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एचआर का हम देखते हैं कि मुस्कान है तो जाहिर सी बात है कि बंदा खुश मिजाजी के साथ, मतलब वो डर नहीं रहेगा, डर से मतलब वो बेफिक्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल खुशनुमा हम बना देते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वो मुस्कुराहट गायब है, चाहे वो एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है। एक बात ये, दूसरी बात इसी से रिलेटेड, चूंकि एचआर की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, भाषा कितना मैटर करती है सर। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन अंग्रेजी का जो धारा प्रवाह है वो उसके पास नहीं है। आपकी बात को वो समझ पा रहा है और अपनी बात वो आप तक पहुंचा पा रहा है। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि मोदी जी लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस भाषा में आप अपनी पढ़ाई को अब आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: आपने जो सवाल, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड इवन टुडे a lot of people who are talented, who possess qualities, maybe शायद वो थोड़ा अपने आप को दो कदम पीछे रखते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत नहीं है
0: जी।
1: लेकिन प्योरली फ्रॉम HR पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, या UPSC हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन अपीयर इन द लैंग्वेज। व्हाट मैटर्स इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, और आपके अंदर अगर काबिलियत है तो उसके लिए उस काबिलियत के भरोसे आप किस प्रकार से लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कौन सी
0: भाषा
1: का इस्तेमाल होता है। और ये दिस इज अ, चाहे इट इज ऑन अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे इट इज एट लीडरशिप स्पेक्ट्रम इन इंडस्ट्री और इन अ यूनिफॉर्म सर्विस और इन अ सिविल सर्विस, द पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी कैंडिडेट को कभी भी इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलाना भाषा पे महारत नहीं है, फलाना भाषा से मैं वीक हूं। इट डजंट मैटर, आपकी काबिलियत मैटर करती है।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए लेटर्स या यू कहेंगे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा इंटरव्यू का

0: कॉल होगा नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम एक वक्त के बाद किसी बंदे को कॉल जाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप से मुझे कॉल आया, इट मींस कि जो मेरा सीवी था वो एक रिजर्व में रखा गया था, उसको संजो कर रखा गया था। या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम इनको भूल जाते हैं, बैंक नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या होता है।
1: अगेन आई वुड से वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि ही इज बेस्ड ऑन द वैकेंसी फॉर अ जॉब वेदर ऑन अ पोर्टल और अदरवाइज वो फुली क्वालिफाइड है उस प्रोफाइल के लिए, लेकिन फिर भी शायद उसको वो कॉल नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, कई बार पोजीशंस निकलती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन होल्ड हो जाती हैं, कई बार पूल ऑफ कैंडिडेट्स को और वाइड करना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए क्यूआरस चेंज करनी पड़ती हैं।
0: जी जी।
1: सो ऐसा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर वो क्वालिफिकेशन को मैच करता है तो आज नहीं तो कल ही विल, इफ ही इज क्वालिफाइड,
0: तो कॉल जाता ही जाता है।
1: इट इज नथिंग टू वरी अबाउट।
0: सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर हैं एचआर शारदा ग्रुप में। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से गौरव डिमरी जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव अपना मिलिट्री क्षेत्र में इन्होंने देश की सेवा की है। एक अनुशासन को लेकर शारदा विश्वविद्यालय में आते हैं और शायद जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि बंदा अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज अगर मैं कहूं कि एक श्रोता को, एक लिसनर्स को, या जो कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त?
1: As I said earlier also, educational qualification और technical knowledge आपको इंटरव्यू के दरवाजे पे ले आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कैंडिडेट सक्सेसफुल होने के लिए अपना इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दे कि वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एंगेज नहीं कर सकते। जब तक आप एंगेज नहीं कर पाएंगे आप लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर सके, चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर सके एंड अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। नॉट कि चैलेंजेस का होने का वेट करें और बोलें कि मेरी डिग्री मुझे क्वालिफाई करती है, मैं इन चैलेंजेस को अब सॉल्व करूंगा। इट शुड बी द एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, इट शुड बी the ability to engage with people, emotional quotient and positivity, honesty of purpose, the highest levels of integrity which will make you succeed.
0: क्या बात है?
1: Other than the degree only.
0: So listen, मैं समझता हूँ इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि वो जॉब आप हासिल कर ही पाएंगे। चलिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। और बस यही कहूंगा कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
1: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
0: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं। जब आप ऑन रोड आते हैं तो दिक्कतें परेशानियां आपके सामने भी आती हैं। ऑन रोड यानी कि छोटी छोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको उससे बचने की कोशिश करनी होगी। इसका सरल उपाय यह है कि समय से पहले आप घर से निकलें ताकि जल्दबाजी नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और यातायात के जो नियम कायदे कानून है उनका अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं और दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि जैसे वो लेट होते चले जाते हैं, गाड़ी खुद ब खुद उनकी स्पीड में चलती चली जाती है, ऑन रोड रोड रेस की घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वो रेड लाइट को जंप कर लेते हैं, जैसे किसी की ग्रीन लाइट है और इस तरीके से वो सामने वाला व्यक्ति चल पड़ेगा, ये भाई साहब यहाँ से रेड लाइट जंप करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर पुलिस वाले भाई साहब आपका फाइन कर देते हैं। हाँ, इतनी की दिहाड़ी नहीं होती, इतने का फाइन लग जाए। तो इस प्रकार की घटना दुर्घटना से अपने आप को बचाने के लिए यही कहूंगा, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल आपके और गाने के बीच से मैं हट जाता हूं, मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा। वो देखने में अली जफर की आवाज, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑल योर जोर शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमेशा हमें अप टू डेट रहने की बहुत जरूरत है कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे में मालूमात होना बहुत आवश्यक है कि आपके आसपास क्या खास हो रहा है। नए नए नियम बदलते जा रहे हैं, यानी कि 1 मई से बहुत कुछ हमने बदलता हुआ देखा, लेकिन अब एक खबर हमारे सामने आ रही है जो कि 6 मई को इसको कवर किया गया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम अपडेट आपको कर सकते हैं। LPG से जुड़ी हुई ये खबर है, PNG से जुड़ी हुई ये खबर है, तो खबर का मतलब यह है कि खबरदार होना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश में हमने देखा कि LPG की किल्लत दिक्कत परेशानी से हम सब कहीं ना कहीं जूझे, लेकिन भारत की ये शक्ति है कि भारत को दिक्कत परेशानी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिसके बारे में मालूमात होना बहुत जरूरी है। इनमें एक बड़ा बदलाव जो सामने आ रहा है वो है PNG कनेक्शन से जुड़ा हुआ भी है। तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, इसे लेकर गैस कंपनियां लगातार यूजर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अलर्ट भी भेज रही हैं। और अगर आपको ये मैसेज नहीं मिला है तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आप मालूमात कर लीजिए कि कितनी सच्चाई है। लेकिन एक जो सोर्स है, आज तक का ये सोर्स है, उसके जरिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूं कि एक घर एक गैस कनेक्शन वाला रूल लागू किया गया है। और इसका मतलब यह कि अगर आपके पास LPG कनेक्शन है और साथ ही PNG कनेक्शन भी लिया हुआ है तो फिर आपको LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर आपका गैस कनेक्शन को काट दिया जाएगा, बल्कि जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो इसके बारे में जो डिटेल है, जो मालूमात है, आप भी गूगल सर्च करेगा तो भी आपको पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है, क्या है, क्या क्या होने जा रहा है। तो इसके बारे में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। जो सोर्स था वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस सोर्स के जरिए खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। तेरे बिन आतिफ असलम की आवाज, तेरे बिन एल्बम से ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑल यू ऑन सुरु शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम बातें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम के जरिए। फिलहाल आज है 7 मई। मैं देख रहा था कि बहादुर कहीं सो तो नहीं रहे। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज है 7 मई। तो ठीक एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस काम को किया था। जाहिर सी बात है कि जिस सरहद की निगेबान है आंखें, उस सरहद को कोई छू नहीं सकता। और जब कहते ना कि भारत शांति प्रिय देश है, हम पहले से छेड़ते नहीं
2: और कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। गुड मॉर्निंग।
1: और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सैन्य ताकत थी, जो हमारे सैन्य अधिकारी थे, जिसमें कि महिलाओं का जिक्र हुआ, वो हम सब ने देखा। और जो काम हुआ, पूरे भारतवर्ष ने, पूरे विश्व ने उस काम को सराहा। हम तो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही भारत की खूबसूरती है। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर आगे बढ़े, देश में अमन हो, पड़ोस में अमन हो। निश्चित तौर पर एक उस व्यक्ति की तरक्की होती है, हमारी भी तरक्की होती है। और तरक्की बरकत में अगर कोई बाधा आती है तो निश्चित तौर पर फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है। तो तमाम सेनानियों को, तमाम फोर्सेस को हमारी तरफ से नमन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सावन में लग गई आग।
2: अरे सावन नहीं है, लेकिन सिलेंडर के बारे में जो मालूम थी उसके बारे में जान लो, समझ लो कि भैया एलएनजी पीएनजी क्या है। गगन तुम ही बताओ।
1: एलपीजी और पीएनजी अगर आप दोनों साथ रख रहे हैं तो उसमें से सिलेंडर को आपको सरेंडर करना होगा। ये नया नियम आया है, इसके बारे में भी आप मालूम हासिल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, ये बहके कदम नहीं है, ये सख्त कदम है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कार्रवाई हो सकती है। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू सुर शारदा 90.8 एफएम। अनुष्का मनचंदा और रमन महादेवन की आवाज सिर्फ और सिर्फ सुर शारदा 90

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सोमवार से शनिवार सुबह 9:10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:46 हो चुके हैं 7 मई। वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता चला जाता है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा वक्त आएगा। हाँ, वक्त खराब होने में देर नहीं लगती, इसलिए काम को समय पर करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। चलिए और क्या खास खबरें आ रही हैं वक्त से रिलेटेड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वक्त ये कह रहा है कि आने वाला समय हमारा है। हाँ, ये तो फिल्म का डायलॉग है, वक्त हमारा है। हाँ, वक्त हम सब का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने दावा किया है कि नई व्यवस्था वो लेकर आ रहे हैं और जिससे होगा क्या कि टोल प्लाजा यानी कि हाँ ये वाला इनका एरिया है। हाँ बिल्कुल सच बात है, ये देख रेख करते हैं क्योंकि इनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है, तो जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत कम खर्च करना होगा टोल। और मौजूदा समय में 125 रुपए तक के टोल घटकर करीब 15 रुपए तक रह सकते हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 3000 रुपए के पास का भी उन्होंने जिक्र किया और जिससे 200 टोल क्रॉसिंग तक सफर संभव हो सकता है। ये कुछ मेन हेडिंग्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात निकलकर ये सामने आ रही है कि जो नई व्यवस्था लागू होगी जिसमें वाहन बिना रुके सफर कर सकेंगे और जितनी दूरी तय होगी उतना ही टोल देना होगा। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, ठोको क्या ताली। और नई जो प्रणाली होगी नंबर प्लेट पहचान तकनीक और फास्ट टैग पर ये बेस्ड होने जा रही है और इससे टोल पर गाड़ी को रुकना नहीं होगा। और ये सिस्टम 85 टोल स्थानों पर शुरू किया जा चुका है और साल के आखिर तक से देश भर में लागू करने की योजना है।
1: हाँ, देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, हम बदल रहे हैं और हमें बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए।
0: मतलब?
1: नहीं, मैं देश बदलने की बात कर रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, मुझे लगा कि तुम छोड़ के।
1: अरे देश बदलना चाहिए मतलब तरक्की बरकत, मैं बता रहा हूँ।
0: अच्छा ऐसे आ रहे हो,
1: मैं जैसे भी आया हूँ तुम्हारा काम है एडजस्ट करने का। गुड मॉर्निंग।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल न्यू सुरशादा 90.8 एफएम। जी करके देखता हूँ, जी करे देखता रहो, फ्रॉम द मूवी सोलमैट। सोलमेट फिल्म का ही गाना और इस गाने को आवाज दे रहे समीर खान और प्रियंका आर बाला के बोल, समीर टंडन का म्यूजिक, टिप्स का लेबल। ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

बाद इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति। अपना सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली ओनली सुरुशादा 90.8 एफएम पर ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। क्या बात, आए फिक्स बा, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज़ में जोश कम और गर्मी ज़्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं, एसी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूं। सुबह जब घर से निकला तो लगा कि आज का दिन थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत ख़राब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पर खड़ी हो। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास। भाई, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है आपकी जानी पहचानी टीकन देवी जी। तो सबसे पहले टीकन देवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में गर्मी तो बहुत है, लेकिन आज ये बाबू इतनी घबराहट क्यों? गर्मी में पसीना तो आएगा ही, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज़्यादा तेज़ है। और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यही महसूस कर रहे हैं।
1: लेकिन टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई है वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आ रही, क्या ये सब सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं, अब ये गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं रही।
2: देखिए आजी बाबू, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता यह है कि जो गर्म हवा है वो ज़मीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे ज़मीन को तपाती रहती हैं, ज़मीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, फिर वो गर्मी को और तेज़ी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
1: ओहो, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलाकर ये गर्मी बना रहे हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने, लेकिन इस मामले की गंभीरता को भी समझना होगा। ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें एक बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिका रहना और पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो जाना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चला करती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही वो अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, ये तो सच्चाई है और इसे मानना भी होगा। और सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, उनके लिए तो गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
1: तो टीकन भाभी, अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
2: आपका सवाल बहुत अहम है। और सुनो, शादा स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहा है, सेहत सही लाभ कई। उसमें हम ऐसे ही मुद्दों पर अपने श्रोताओं से जोड़ते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है हीट वेव यानी हम गर्मी से कैसे बचें, गर्मी में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना भी बंद हो जाता है, उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार, कभी कभी बेहोशी जैसी चीज़ें भी शामिल होती हैं।
1: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, ये जानलेवा हो सकता है अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए। तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है और शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए गंभीर खतरा भी है।
1: तो भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सब के लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
2: हाँ देखिए, घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को समझना और समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतज़ार करते हैं कि प्यास लगेगी तभी पानी पियेंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बेहद मदद करते हैं और कमजोरी भी आने नहीं देते।
1: टीकन देवी जी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सब हमारे श्रोताओं को जानना बेहद ज़रूरी है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में पानी पीना काफ़ी नहीं होता, उस स्थिति में ORS बेहद मदद करता है, जो कि शरीर को ठंडा रखता है।
1: आपके कहने का मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी ORS काम आता है?
2: बिल्कुल, सिर्फ बीमारी में नहीं गर्मी में भी ORS काम आता है, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके छोटे छोटे घूंट हमें पीने चाहिए। अगर घर में ORS का पैकेट ना भी हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करते हैं।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों ज़रूरी डोज हैं। अगर समय पे दोनों शरीर को मिल जाएं तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो सही बात है। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
2: हाँ, हमें बाहर जाने से बचना चाहिए बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने में जितना हो सके बचें। अगर बहुत ज़रूरी है तो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले सिर को ढक कर निकलें, चाहे गमछा हो, टोपी हो, छाता हो, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: बिल्कुल, तो ये तो बात आपने बताई कि किस तरह से हमें बाहर जाना है, कब जाना है और कैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलना है। अब बात आती है खाने पीने की। तो खाने पीने में इस मौसम में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
2: हाँ, गर्मी में खाना कभी कभी हमें भारी लगने लगता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। गर्मी में हमें अपने शरीर पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना, ज़्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए।

0: इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां लें जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, संतरा। ये सिर्फ ना शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: बिल्कुल। तो भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा, उनका क्या?
0: देखिए, आपने हमारे श्रोताओं को बताने के लिए बेहद ज़रूरी बात उठाई है और इस विषय पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम को थोड़ा बदलें, कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज़ धूप में आराम करें, बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था करें। अगर आप अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खास तौर पर हमारे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। जो लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
0: हाँ, ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतज़ाम हो सके तो अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी बेहद ख़तरनाक हो सकती है। इसीलिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है।
1: टीकन भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जैसे हम होते हैं?
0: हाँ, सही सवाल है और मैं आपको बताऊंगी कि सच में जानवर भी प्रभावित होते हैं और उतने ही होते हैं जितने कि हम होते हैं, बल्कि कई बार तो हमसे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मी में हम उनके लिए पानी और छांव का इंतज़ाम कर सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी यही है। तो सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन या जो भी ज़रूरी चीज़ें आपके पास हों उसमें स्वच्छ पानी रखें, उनके लिए दाना रखें, पेड़ ना काटें। छांव में प्रकृति सांस लेती है और पक्षियों का बसेरा होता है।
1: तो टीकन भाभी, आपके कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल नहीं सकते। लेकिन क्या जानवर भी इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम?
0: बिल्कुल, कई बार तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो किसी पक्षी या जानवर के लिए वो जीवनदान तक बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है और यही असली इंसानियत भी है।
1: तो साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही है, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज़ धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक और बात, धूप से बचाव है ज़रूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसा कोई मामला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन वो बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी तो बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। लेकिन धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया। फिर उसे चक्कर आने लगी। जब तक वो समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ है।
1: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
0: हाँ, सबसे दुख की बात तो यह है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं। समय समय पर पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण मुख्य रूप से होता है।
1: तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसलिए आज से ही तय कीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: हाँ बिल्कुल, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है। हमें थोड़े थोड़े समय पर पानी पीना है और लू की चपेट में नहीं आना है। सुनो, शारदा स्मार्ट के साथ मिलकर यही मुहिम चला रहा है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला करती है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही आज सबसे बड़ा उपाय है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अब हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो मिलकर बोलते हैं, सेहत सही तो लाभ कही। मेरे साथ हैं शशि कपूर जी, जो कि आजे की भूमिका में हैं, और मैं हूं दीपाली, जो कि टीकन भाभी की भूमिका में हैं। हम दोनों मिलकर आपसे विदा लेते हैं स्मार्ट के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत। एक नए विषय और नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
1: और अब दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन याद रखिए, पानी पीते रहिए, छाव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
3: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
4: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
3: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
4: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
5: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
6: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम दोस्त, लाभ सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं गगन आपके साथ लेकर आपका अपना वही कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में दिल से, दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है? क्या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी? हमारे साथ हैं इस चर्चा में टीकन भाभी, और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमें, हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की

0: उसके बाद आपने क्या किया? आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत से ही लाभ कई के लाइव एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर भी फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात करी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बेटियाँ आपके बेटी की उम्र की हैं, और आप इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर एक चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मधुर आवाज आपने सुनी, ये मधुर आवाज है, हमारे साथ है हमारी टीकन भाभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है? टीकन भाभी क्या कहती हैं आप?
2: मेरा सीधा जवाब है नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पे डाल देना गलत है। विज्ञान यही कहता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वो साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: देखिए, इसीलिए हम टीकन भाभी को अपने इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि टीकन भाभी बड़ी अनुभवी हैं और तथ्यों पर आधारित बातों को आपके सामने लेकर आ रही है। तो दोस्तों ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल मेरा सुनीता जी से है कि बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सबसे जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी वे माँ बनी हैं। एक गवाह तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्भ से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देता है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत न बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि ये सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घर तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुल के बात नहीं करते। जहाँ चुप्पी ज्यादा होती है वहाँ अफवाह और तेजी पकड़ती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है और माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसीलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं है, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: दोस्तों, ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ पूछना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे।
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये जो बाद में देखे वाली चीज है ना, वो होनी नहीं चाहिए। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। यह टीका स्वस्थ बच्ची को इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम से कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: भाई, आगे का सवाल पूछने से पहले मैं आप दोनों की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है। अनुभव के आधार पर हम बातें आप तक, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार आ जाए तो टीकन देवी क्या कहेंगे आप?
2: इंजेक्शन लगने के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन या हल्का बुखार, ये कई टीकों में होता रहता है। लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: लेकिन भाभी, अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है सुनीता, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: बिल्कुल, बहुत सही बात दोस्तों टीकन भाभी ने कही है, और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तथ्यों पर आधारित बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक है कि HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य ये कहता है कि उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है दोस्तों। दूसरा मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य कहते हैं कि आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वो मां है। एक और मिथक की बात करते हैं, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य कहते हैं कि समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। अगला मिथक सामने आता है कि मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं है। भाई, वैज्ञानिक कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। सुनीता जी, आप क्या कहते हैं?
1: जब आप ऐसे एक एक करके बात बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में तो सब गड़बड़ हो जाता है।
2: इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़े में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, मगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: तो उससे कहना कि क्योंकि कुछ बीमारी का बचाव पहले से किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में होने वाली एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो ये पूछे कि क्या इससे मेरे पीरियड्स पे असर होगा, तो उसको बता देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि क्या इससे आगे चलकर मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, तो उसको ये जरूर कहना कि ये सब झूठी अफवाहें हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही टीकन भाभी। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: पर हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का एक कदम है, उसे अधिकार है ये पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का ही हिस्सा है।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की, पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पे डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। पर वो बोली ठीक है अम्मा, अब हम साथ चलेंगे।
2: देखा सुनीता, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर एकदम से आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौंहें चढ़ा लेते हैं।
2: बस तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी ही कम चलेगी।
0: बिल्कुल। अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों आधिकारिक जन संदेशों में ये भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। दोस्तों
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है, अब हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में तो कभी नहीं सोचा।
2: वही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं करती। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी शरीर की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है ना, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा ऐसा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
0: वाकई बहुत अच्छी बातें सुनीता जी आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही। दोस्तों यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं दोस्तों, पर सच टिकाऊ होता है।

0: और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है। जैसे कि सुनीता जी ने, टीकन जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात रखी कि लड़कियों की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है कि ना पूछना ही सबसे बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हो तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: और टीकन भाभी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको सुनना होगा सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है दोस्तों, जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक और बात मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और एक अनुभव के आधार पर दोस्तों, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जब टीकन भाभी, सुनीता जी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों को भी इस प्रकार की भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करें दोस्तों। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर इसी रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा। अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिरी में रखते हैं।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ में चलना चाहिए। तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुंचेगा।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास।

0: मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही ले। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, नंबर एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। नंबर तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। नंबर चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। नंबर पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। नंबर छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सातवां नंबर, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। क्यों सुनीता जी?
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
2: बस सुनीता, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझा पाना भी है। अब हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
0: तो लाभ कई। तो श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। टीकन भाभी का, सुनीता जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सब खुश रहें, निरोग रहें। ऐसे विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: I'm sorry नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: तड़पता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
1: You know, Shail,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के साथ हमको खेती में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी हम समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सकेंगे और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। किसान मित्रों, जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, आंधी, गर्मी और कीटों के प्रकोप से आपकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे खेती की जाए ताकि जलवायु परिवर्तन का असर हमारी खेती पर कम से कम हो। तो जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमारे किसान भाई संरक्षित खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और ये संरक्षित खेती आजकल बहुत की जाती है और अनेक हमारे किसान भाई थोड़ी सी जमीन में बहुत सारा लाभ कमा रहे हैं। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में फसलों को मौसम की मार, रोग और कीटों के साथ साथ खरपतवारों और पशुओं से संरक्षित करके खेती की जाती है। इसमें जो तकनीक अपनाई जाती है उसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पुआल और सूखे खरपतवारों से मल्चिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संरक्षित खेती कृषि की एक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत पौधों को प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों या यूं कहें प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज ठंड, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अत्यधिक बारिश, सूखा, इन सब से बचाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जो फसल के विकास में मदद करती हैं और इस तरह से इस तकनीक से बेहतर गुणवत्ता और उच्च पैदावार प्राप्त की जा सकती है। किसान मित्रों, संरक्षित खेती में विभिन्न प्रकार की कृत्रिम संरचनाएं बनाई जाती हैं जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधों की वृद्धि के अनुकूल सभी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। और किसान मित्रों, अब बात करेंगे संरक्षित खेती के लाभ के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालोर। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये रागनी सुनील चौहान और रविंदर खालौर से। किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, आधुनिक तकनीक से फसलों की संरक्षित खेती करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नवीनतम तकनीक से सुसज्जित नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती की जाती है। प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। संरक्षित खेती के तहत फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो हमारे किसान भाई तो यही चाहते हैं कि लागत कम हो और किसी भी मौसम में उनको अच्छा उत्पादन मिले। एक और महत्वपूर्ण बात किसान मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संरक्षित खेती में हम बेमौसम की फसलों को भी उगा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कोई भी अगेती फसल उगाते हैं तो उसका दाम बाजार में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं संरक्षित खेती के द्वारा। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि संरक्षित खेती से हमारे किसान मित्र विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

इन नवीनतम तकनीकों को अपनाने से पर्यावरण की तुलना में फलों, फूलों और सब्जियों की उत्पादकता को 4 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इन तकनीकों के तहत अच्छी उत्पादकता के साथ साथ फसलों की बेहतर गुणवत्ता भी प्राप्त होती है। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमारे जो ग्रामीण युवा हैं, इन तकनीकों को अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आखिर में आपके मन में ये बात आ रही होगी कि संरक्षित खेती करने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जितने भी उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी वो हम कहाँ से लें, कितना पैसा खर्च होगा उसमें। तो इन सब बातों की जानकारी आप ले सकते हैं आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि केंद्र में। आपके जिला कृषि अधिकारी हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संरक्षित खेती करने के लिए जो भी संरचना बनाते हैं और उसमें जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, सरकार आपको अनुदान भी देती है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना संरक्षित खेती के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, जब हमारे गांव का विकास होता है तो हमारे देश का विकास होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारे किसान भाइयों की अच्छी आमदनी होगी तो हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान शुरू किया था। किसान मित्रों, आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया ये अभियान केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ये अभियान 14 अप्रैल 2016 को समाज सुधारक डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की स्मृति में शुरू किया गया था, जिन्होंने पंचायती राज के विकास और वंचित वर्ग के समान अधिकारों के लिए प्रयास किया था। इसे ग्राम स्वशासन अभियान के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। किसान मित्रों, इस अभियान का मूल उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की दृष्टि से प्रेरित होकर गांव में सामाजिक सद्भावना को बढ़ाना, फसल बीमा योजना और मृदा कार्ड के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देना, ग्राम सभा की बैठकों का प्रबंधन करना ताकि क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए पैसे का सही उपयोग हो सके। इसके अलावा अगर हम इस अभियान के लाभों के बारे में बात करें तो इससे कृषि उत्पादकता और खेती के तरीकों में सुधार होगा, गांव के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और हमारे जो युवा हैं उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ सके। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हीर रांझे का, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप हीर रांझे के किस्से से रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

आज उस कमर ने बेनिफिशियर चूट गया। मेहरबानों तारा रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपदा पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: डेंगू और मलेरिया का दी एंड।
2: तारा, तुम कर क्या रही हो तारा?
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: दोस्तों, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर और समय बदलते सज्जनों, लगे ना कोई देर। मेहरबानो सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज उसके ललाट से वो ज्वाला दहक रही है कि जिसके आगे हमारी एक ना चली। मेहरबानो यमराज आश्चर्य में पड़ गए, वो कौन वीर है यमलोक में? मेरे मेहरबानो सत्यवान आखिरी बातें अपनी ब्याही से कर रहा था। मेरे मरने के बाद अगर तुझे मुझसे प्यार है तो सती हो जाना और स्वर्ग लोक में आके मेल मिलाना, और सती ना होना तो मेरे मरने के बाद जप गायत्री मंत्र कराना, गौ माता का दूध जप में अवश्य रखना। मेरे मेहरबानो इतने ही में यमराज क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सावित्री हाथ जोड़ के यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। महाराज मुझे विधवा करके मत जाओ,

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: आज जहां नजर घुमाओ वहीं मन चले दिख जाएंगे। घर से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक, ऐसे में माँ बाप के द्वारा बढ़ती सख्ती लड़कियों के दिल में और डर डाल देती है। ऐसे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मनचले बहके कदमों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमें बचकर रहना होगा, हमारी एक लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। खासकर किशोरी उम्र में अगर देखा जाए तो ये उम्र नई चीज़ों को समझने और सीखने की होती है, पर हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इस उम्र में ही कदम सबसे ज़्यादा बहकते हैं। और जब बात इंटरनेट की आती है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। चैटिंग ऐप्स से लेकर डेटिंग ऐप्स तक मनचले अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट विकास के उपयोग के लिए है, ना कि जाल बिछाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, क्योंकि देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में भारी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। NCRB के आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 में साइबर अपराधों में 4,45,046 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये 28,02,048 था। ये सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और किशोर उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। इंटरनेट में ऐसे नए अनजान लोगों को दोस्त बनाना, उनसे अपनी पर्सनल डिटेल साझा करना, ऐसी नादानियां होना आम बात है। हर जगह सोशल मीडिया में अपनी अपडेट्स डालना, इन्हीं सब चीज़ों की तलाश होती है मनचलों को। इसीलिए हमें बच्चों को इंटरनेट के दोनों पहलू समझाना चाहिए। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं तो हमारे आसपास ही ऐसे मनचले दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में किशोरों को हर अच्छी लगने वाली चीज़ सही लगती है, तो उन्हें हर चीज़ के दोनों पहलू समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करने से कम सोचेंगे। उनको समझना बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनको कम से कम पता होगा कि वो किस राह में चल रहे हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिश्तेदारों ने छेड़खानी की या प्यार था उनका, किससे ये बात साझा करें। वैसे तो माँ बाप को ऐसी समझ बनानी चाहिए अपने और अपने बच्चों के बीच कि बच्चे उनको अपना दोस्त मान लें। कुछ भी सलाह या मन की बात करनी हो तो उनसे ही वो सबसे पहले करें। भारत में 86% यौन उत्पीड़न परिवार के सदस्यों जैसे भाई और चाचा, साथ ही पड़ोसी, नियोक्ता, सहकार्यकर्ता और दोस्तों द्वारा किया जाता है। 14,102 यानी 38% बलात्कार पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऐसे में आपका अपने बच्चों के साथ कैसी समझ होनी चाहिए, आइए इस कविता द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, क्योंकि हम नहीं अनजान हैं। पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं हम। बता दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे हमदर्द हैं हम। डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं, डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं। समझने वाला ये वक्त है आया, मुझे तू अपना दोस्त बना ले मेरे बच्चे। देख तेरे लिए मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लाया। इस कविता के माध्यम से हम ये बता इस कविता के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माता पिता को किस प्रकार से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो बच्चे अपने माता पिता से हर एक बात साझा करें। अब चलिए सुनते हैं कुछ बहके कदमों की कहानियाँ। निखिल जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं।
6: अरे यार राज, सड़क पर आज कोई फूल झड़े नजर नहीं आ रही।
7: हाँ यार निखिल, आज तो कोई दिखे नहीं रहा।
6: यार एक बात बता, क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि सड़क के लेफ्ट में जो लड़की जाएगी वो मेरी और राइट में जो जाएगी वो तेरी।
7: चल ठीक है, पर अगर कोई लड़की गुस्सा करेगी तो?
6: अरे यार ये लड़कियाँ हमारे लिए है ना, और हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी।
7: चल ठीक है, बस इतना हंसने की कोशिश मत कर, इतना बता दे लड़कियाँ कहाँ दिख रही हैं यार।
6: देख देख देख देख देख, आई तो सही।
7: अरे हाँ वो रही।
6: अरे अंधे, अरे देख तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट वाली रोड में नहीं, राइट वाली में।
7: यार निखिल देख, उसे तू कुछ मत कहियो।
6: क्यों?
7: क्योंकि वो मेरी बहन है यार।
6: यार राज देख, डील तो

0: पहले ही तय हो गई है। तूने ये कहा था कि जो राइट साइड से लड़की आएगी वो मेरी होगी।
1: पर यार निखिल, वो मेरी बहन है।
0: देख, मुझे कुछ नहीं पता, तूने तो पहले ही शर्त लगाया था। और अगर तेरी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मैं खुशी खुशी हाँ कर देता।
1: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी तेरी इच्छा।
2: आगे क्या हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़े मनचले हो सकते हैं? चलिए आइए इस दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं।
3: अरे भाई अमित, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार?
1: और नहीं तो क्या करूं यार, उस सोनिया ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकराया ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मना भी कर दिया यार।
3: अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे मना कर दे?
1: और नहीं तो क्या, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार, सबके सामने बीच सड़क पर।
3: क्या, और तू अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठा है अपनी इंसल्ट करवा के?
1: मैं तेरी जगह होता तो अभी तक उसे सबक सिखा चुका होता। यार मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस तरह से करूं और क्या करूं ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे।
2: मनचले किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अनजान ही हो, कई बार रिश्तेदार और टीचर्स भी हो सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किशोरी उम्र के ही मनचले होते हैं, कई बार देखा गया है बड़े बूढ़े भी ऐसी तुच्छ हरकतें करते पाए गए हैं। ऐसे में परवरिश का एक बड़ा रोल है। समाज में पल रहे पनप रहे इस सोच को खत्म करने के लिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर।
4: नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आपने दो ऐसे नाटक सुना जो ऑडियो नाटक था, जिसमें आपने खास तौर से मनचलों की बातें सुनी और किस प्रकार से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से वो लड़कियों के लिए अपने प्लान बनाते हैं और फिर उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ अक्सर देखने को मिल जाती है, हमारे आस पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में महिला के साथ लूट, छीना छपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप आदि घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और मार्केट में या ट्रेन में या ऑटो में या लिफ्ट में, गली मोहल्ले में मनचले या बदमाश लड़के को का जो छेड़छाड़ करना है वो जारी है। उन पर अश्लील कमेंट करना, अश्लील इशारे करना आदि रोजाना की लगभग आम बात सी हो गई है। बहुत सी लड़कियां रोज रोज इन बदतमीजियों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं या फिर डर कर कुछ कह नहीं पाती हैं, जिससे ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में फोन के माध्यम से अंजना जी हैं, जो कि रूम टू रीड की प्रोग्राम एसोसिएट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सर।
4: हम आपको बता दें कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप सड़क पर हो, रास्ते पर हो, पैदल चल रही हो, तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हेडफोन इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से समझदारी बरतें, आने जाने वाले रास्ते का चुनाव किस प्रकार से करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में किसी अभी के साथ अकेली हो तो क्या करें, और जब आप अकेले या रात में टैक्सी या ऑटो का सफर कर रहे हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा करे तो क्या करें। तो इसका क्या इलाज है समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है।
5: ये बहुत एक देखिए बहुत सामान्य सी बातें कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मन चले तो लोग अगर आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे सोच के स्तर पर। तो हम क्या कह रहे, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो परिवार में देखें, घर में देखें, तो वो जो आप लड़कियों को तंग करते हैं उनको आपके पुरुषत्व से जोड़ा गया। अरे लड़के तो ऐसे ही होता है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया और लड़की ने को अगर उसने परेशान कर दिया तो उसकी कॉलर दूसरे लड़कों के बीच में भी खड़ी हो जाती है। तो एक तो इसका जो है हम कैसे इसका स्पेसिंग हो जाता है मनचले शब्द का, जो जितना एक कहना चाहिए ग्रीवियस या फिर जिस तरीके से इसका प्रभाव है हम उस तरीके से इसको देखते नहीं है। तो हम सामाजिक तौर पे मान के चलते हैं कि लड़के तो मनचले होते ही हैं और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ही सब कुछ की जिम्मेदारी तुम पे है। तो अगर तुम्हें लड़का छेड़ रहा है तो तुम्हें ही कोई कमी होगी। लड़का अगर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर वो कुछ भी बोले जा रहा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों नहीं हो, तो गलती लड़के की होगी। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चीज को समझने के लिए, मतलब हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस शब्द को इतने हल्के से ना लें। अगर आपका लड़का है तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लड़के भी अनजाने में करते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि इसका प्रभाव जिसको आप छेड़ रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है
1: जी।
5: और आप उसको अपने जो क्षणिक खुशी होती है या पुरुषत्व होता है उससे जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में कि लड़के ही लड़की को छेड़ते हैं, या लड़कियां भी कभी कभी ऐसा आता है कि जगह होती है जहां पे लड़कियों का वर्चस्व होता है, तो देखा गया कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़कियों ने छेड़ दिया, विच इज वेरी रेयर, बट लोग बोलते हैं। तो हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और इस पे उनका सेंसिटाइज करना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ये कहा कि जो हमारे अंदर ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बन गई है कि अक्सर लड़की ही गलत होती है और लड़की को सबमिसिव होना चाहिए।
5: तो तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा इसलिए लड़के छेड़ रहे हैं।
1: हाँ, तुम्हारे कपड़े छोटे थे इसलिए छेड़ रहे थे।
5: तुम जींस पहनोगे तो होगा ही यही तुम्हारे साथ। तो खास करके ये जो एडोलेसेंट एज है, किशोरावस्था में इस तरह की पाबंदियां जो है वो लड़कियों पे बढ़ती जा रही है, और इसी तरीके का फ्रीडम जो है लड़कियों को मिलता चला जाता है। रूम टू रीड अगर मैं संस्था की बात करूं तो हम लोग लाइफ स्किल पे काम करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ स्किल कितना महत्वपूर्ण है एक एडोलेसेंट उम्र के लड़के और लड़कियों को समझने की, कि आपको उस चीज के लिए आपको जागरूक करता है, आपको सेंसिटाइज करता है, और आपको ये देखने का मौका देता है कि आपकी हरकत दूसरी जो आपका काउंटर पार्ट है जिसको आपने छेड़ा, उनके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको सामाजिक पाबंदी किस तरीके से लगाई गई, और परिवार के अंदर में भी किस तरीके से रोक टोक शुरू हो गई। ये तो एक है। दूसरी तरफ देखिए जो मनचला लड़का है उसको देखिए, उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। आप छेड़ने लगे, आप उस छेड़ने के विशेष साइकिल में जा रहे हैं, तो आपका सेंसिटाइजेशन लो हो रहा है। तो आपके सामने वाला जिसको आप छेड़ रहे हैं या जो दुखी हो रहा है उससे आपको क्या हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव प्लेजर लेने लग गए, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगना चाहिए वो आपका डाइवर्ट हो गया और डिस्ट्रक्टिव माहौल में चला गया, एनर्जी की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं उस उम्र में अगर आपका पढ़ाई, आपकी अलग जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो पीछे रह जा रही है, और आप इस तरह की हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं जिस वक्त में माता पिता बिल्कुल एहसास तक नहीं करते हैं।
1: सही,
5: और जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो तो जितनी वो सोचती थी समस्या उसे कहीं ज्यादा हो गई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी। और तब उनको लगता है कि मैंने तो तुम्हें सारी सुविधाएं दी, मैं तुमको रोकी नहीं, मैं तुमको कहीं जाने से रोकी, मैंने पढ़ने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई और फिर भी जो है तुमने ऐसा किया। ये लड़का ने नहीं किया या लड़की पे जो आपने पाबंदी लगाया इन लड़की ने नहीं किया, ये पेरेंट्स के नेग्लिजेंस ने किया या पेरेंट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस ने किया। तो इस परिस्थिति में तीनों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, माता पिता का भी होना बहुत जरूरी है और लड़का व लड़की उनका भी अवेयरनेस, उनका भी सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, तभी ये मनचले शब्द को भी हम जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे।
1: जाहिर सी बात है, और हमने तो मनचले शब्द को समझ ही लिया है और साथ में हमने ये भी कॉन्सेप्ट जान लिया कि जो ये अवधारणा है हमारे और हमारे आसपास रहने वाले समाज में जो पेरेंट्स हैं उनको बदलनी होगी और अपने बेटों को सीख देनी होगी। अब हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है, तो लड़कियां किस प्रकार से अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं, जब आप सड़क पे चलें, रास्ते में चलें, पैदल चल रही हो तो क्या करें
5: जी? पहले तो जब वहां पे आते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होगी, लड़की अगर रास्ते में आप चल रही हैं और आपका कोई पीछा कर रहा है तो इसमें एक बात जो हमें, मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि इसमें दो तरीके की परिस्थिति होती है। पहले तो जो आपको छेड़ रहा है या रास्ते में आपके पीछे जा रहा है, तो आप पहले उसको श्योर हो जाइए कि सही में जो बंदा है वो छेड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लड़की थोड़ा घबरा जाती है, एक्सपोजर का अभाव है या वो एक घर में डांट पड़ेगी लड़का तुमको छेड़ता है, तो अगर नहीं भी छेड़ता है वो जस्ट इमेजिन करती है, क्योंकि इसमें ना मीडिया का भी बड़ा रोल है। आप फिल्मों में देखें, सीरियल में देखें, तो छेड़ने वाले लड़के का ना एक अलग टाइप दिखा दिया जाता है
6: जी।
5: तो

0: अगर उस तरीके के लड़के या उस ड्रेसअप में लड़के आपको रोड पे दिखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं ये लड़का चेंगड़ा टाइप का होगा, मनचला है और ये छेड़ देगा मुझे, तो घबराहट में भी आप गलतियां कर जाती
1: है। Exactly. तो सही सही सही बात है।
0: तो सबसे जरूरी है इस जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप रोड पे चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो जहाँ जा रही हैं, जिस कपड़े में हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, वो आपका निर्णय है और आप इसलिए उस पर कपड़े में हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आके कि शायद मैंने आज जींस पहन लिया है, छोटा टॉप पहन लिया है, क्रॉप टॉप है, तो शायद मुझे लड़का इसलिए छेड़ रहा है, और घर जाऊंगी तो मम्मी भी डांटेगी, तो घर से भी छुपा के मैंने पहना है। और ये तो आपका निर्णय है, आपने जो पहना है वो, या आप जिस जगह पे चल के जा रही हैं वो उस जगह के लिए आप खुद निर्णय लें कि वो जगह सही है, आप जो कर रही है वो सही है और आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये एक बात है। दूसरी बात है आप ऑब्जर्व करें थोड़े देर, मान लीजिए आप चल रही हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है तो थोड़ा सा तेजी से चलने लगी, क्या वो बंदा भी तेजी से चलने लगा, रास्ते मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए अगर आप फ्रंट जा रही हैं, और अगर कोई बिजी वाला जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह लेफ्ट में है या राइट में है तो आप उधर मुड़ जाइए। और देखिए वो सामने वाला बंदा भी जा रहा है, अगर वो सही में आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है तो सबसे पहले यू स्टॉप, आप वहां पे रुकिए क्योंकि आप भीड़ वाले जगह पे पहुंच गई हैं। अगर शांत जगह में है उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहाँ भीड़ भाड़ है,
1: जहाँ पे लोगों का चहल पहल है,
0: लोगों का चहल पहल है, किसी दुकान पे रुक जाइए जैसे ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उस जगह पे सबसे पहले आप वहां पे भी कर सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे आ रहा है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जा सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। कोई महिलाएं अगर मिल जा रही हैं, अगर आप पुरुष के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किसी फीमेल का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं किसी, तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। दूसरी बात है कि अगर वो सही में आप एक कमेंट पास कर रहा है या आपका पीछा कर, तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कीजिए।
1: Exactly.
0: और जहाँ हाँ आप वहां पर कहिए कि आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत है और उसको आप फेस कीजिए। वो चीज है, आप जितना भागेंगी, आप जितना छुपेंगी, आप जितना डरेंगी तो आपको उतना ज्यादा तंग किया जाएगा और वो आपके पीछे उतना दौड़ेगा।
1: मुझे तो लगता है कि हेडफोन हाँ, का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के उस वक्त करना चाहिए चलते समय।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि आप सड़क या रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम लिफ्ट में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से समझदारी बरतनी है।
0: तो पहले तो पीछे वाले सिस्टम से ही आते हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और वहां पे आ गए कि पब्लिक प्लेस में आ गए, वहां से आप हेडफोन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो रहे हैं, आपको दुनिया का कोई एहसास नहीं, अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे हैं, तो आपके आसपास का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बेहोशी जो है वो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सेम वो हेडफोन अगर आप लिफ्ट में इस्तेमाल कर रही हैं, आप कहीं भी कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अवेयर हों। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, पर पब्लिक जब आप चल रही हैं या बाहर हैं तो कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट कॉल को ही लें और हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। उसका सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता कि कोई आपको छेड़ रहा है, आप लिफ्ट में अकेली हैं तो आपको आपको दिखेगा नहीं कि कोई आपको गलत नजर से देगा, और आप अपनी दुनिया में व्यस्त है तो आपको नहीं पता, जब तक पता चलता है आपके लिए लेट हो जाता है या बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है अगर आप लिफ्ट में हैं तो आपके लिफ्ट में मिरर होता है तो आप 360 डिग्री जो है आप देख सकती हैं कि कौन है जो मेरे तरफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही देखा है। लिफ्ट में अलार्म बटन होता है तो आप उसको प्रेस कर सकती हैं और आप ताकि जो गार्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां लोगों को पता चल जाएगा क्या परेशानी है। तीसरी बात है जिस फ्लोर पे आप है तो अमूमन 10 सेकेंड लगता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, अगर हाइट सर्टेन हाइट होता है तो एक मिनट का मामला है, आप इमीडिएट जो अपकमिंग फ्लोर है उस पे उतर जाइए, वहां से उतर करके आप स्टेयर से नीचे की तरफ आइए जो गार्ड रूम का जगह है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाएंगे हो सकता है वही आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो, तो वहां पे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए और उस जगह पे पब्लिक प्लेस में आकर के मतलब वहां पे अपनी चुप्पी को तोड़िए और वहां पे बोलिए कि आपको मदद की जरूरत है। हेल्प, ये जो होता है ना स्टॉप रन एंड हेल्प,
1: यस
0: हाँ ये आपको करना चाहिए, एंड दैट इज विथ योर कॉन्फिडेंस। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, और उसको हम समझते हुए आप अपने एक्शन को लें, घबराएं नहीं बिल्कुल।
1: सही बात है। और जब हम अगर ऑटो में सवारी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं तो, या टैक्सी हो तो उस वक्त किस तरह से प्रिकॉशन लेना है?
0: जी बिल्कुल, ऑटो हो या टैक्सी हो, ये कि अमूमन प्रैक्टिस रखना चाहिए कि कितने नंबर का ऑटो से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई हमें छेड़ देता है, और तब अगर हम पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पे कॉल करके या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं, तो हमसे यही पूछा जाता है कि ऑटो का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर के पास ना एक नंबर होता है, उनका नाम के साथ नेम प्लेट होता है। तो आप हमेशा इस चीज को ले, या टैक्सी में भी जाए, कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी का नंबर, ड्राइवर का नाम और उनके आईडी कार्ड को जरूर देखें।
1: अच्छा, ताकि अगर बिल्कुल कुछ कह रही थी आप।
0: हाँ, ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लूनेस नहीं है। आप अगर ट्रेवल करें, आप अपना फोन नंबर या लोकेशन किसी और से भी शेयर कर लें फ्रेंड से।
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो है ही। अब हम बात ये कर रहे थे कि जैसे सुरक्षा की चीजें अपने पास रखने की हो, या फिर पार्टी के दौरान सतर्क रहने की चीज हो, या होटल में किस प्रकार से चुनाव करें, कहीं जैसे बस से जा रहे हैं, दूर का रास्ता है और बस खराब हो गई, बीच में होटल लेना है, तो किस प्रकार से हम उसका चुनाव करें, इन चीजों का कैसे ध्यान रखें हम, या पार्टी के दौरान सतर्क रहने वाली बात हो।
0: बिल्कुल, एक तो देखिए सेफ्टी किट होता है, तो आप अपना सेल्फ सेफ्टी किट जरूर अपने साथ रखें। बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है हमेशा निगेटिव है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी निगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हमारे लाइफ में आती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, चाबी का की होता है ना, किसी चीज की चाबी है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर उस तरीके है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिली स्प्रे होता है, उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी सेफ्टी की होती है, जैसे पेन है, पॉइंटेड है, पेंसिल है, जो आपके पर्स में होता है, होना चाहिए। तो आप उसका इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं सेफ्टी की के लिए, पर उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना होगा। आपका पर्स है, पर्स में अगर साइड में कोई ऐसा हार्ड मेटल को लटका के रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, और आप उसको अगर सिर्फ फेंकती भी है तो अगर उस मेटल से चोट लगता है तो सामने वाला एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा, और आपके पास स्पेस मिल जाता है कि आप वहां से भाग सकती
1: है। बिल्कुल,
0: तो ये है। रहा जब हम ट्रेवल करते हैं और होटल का चुनाव करना है या कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को देखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, है ना। तो आप अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है, और सुनो शारदा पे आप जो भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं तो साइबर सेफ्टी को देख रहे होंगे, तो उसके लिए सुना होगा। तो उन सब चीजों में हम हमेशा बताते हैं कि अगर साइबर में भी, साइबर अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को सर्फ कर रहे हैं, तो वहां पे देखें कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, गूगल की तरफ से क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वहां से एक होटल का डिटेल लें उस सिटी का, और अकॉर्डिंगली आप वहां पे संपर्क भी करें, और सेम डिटेल आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट को भी शेयर कर सकती हैं कि आप उस जगह पे हैं और यहाँ तक हैं और आपके जरूरत पे आपकी मदद की जा सके। पर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, अगेन, कि आप ये ना बार बार शेयर करें कि मैं अकेली हूँ,
1: अच्छा
0: मुझे अच्छा रूम दो क्योंकि मैं अकेले ठहरने वाली हूँ, या मैं शहर में अकेली हूँ।
1: ओके,
0: नो, यू आर हियर बट यू आर, मतलब आपके साथ और भी सारे लोग हैं, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें। या फिर कभी हेल्प भी लेना है तो कोई तंग कर रहा है और उसी होटल का सामने वाला बंदा कोई दिख रहा है, तो उतने ही फ्रेंडली तरीके से बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो एकदम से वो अकेलापन का अनुभव लेकर के अकेले ना जाए,
1: ये भी हानिकारक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए, तो अब हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। एक छोटी सी बात ये भी करनी थी कि लास्ट में आप थोड़ा सा एक तो मैसेज जो दे दीजिए कि आज इस प्रोग्राम के तहत क्या मैसेज हमारे सुनो शारदा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहती हैं, और साथ ही साथ अगर इस राज्य की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें तो उनके लिए हम किस प्रकार से पुलिस से सहायता ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साकिब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात की, वो सेल्फ की बात करी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमने रखा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या रखा, होटल कैसे ले, पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, गाड़ी का नंबर रखना चाहिए, और इस तरीके की चीजें हमने बात। तो अभी हमने दो सेगमेंट को बहुत रखा, कि अगर कहीं भी हैं तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस। अब जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम की अवेयरनेस, मतलब सरकारी तंत्र है हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारी हमारा मदद करने के लिए, राइट। तो जैसे 100 नंबर होता है, आपको इमीडिएट कुछ लगता है आप 100 नंबर पे कॉल कर सकती हैं। वुमन हेल्पलाइन नंबर होता है कि

0: पास इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको कह सकती हैं कि रुको और मैं आप एक्शन ले सकती हैं, तो स्टॉप एंड एक्शन के लिए आपके पास समय मिल जाता है, राइट। एक जो बहुत नंबर है जो महिलाओं को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, ये नंबर है जैसे 2694745 है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमन के लिए 2337057। तो ये सारे जो नंबर हैं उनको आप अपने पास रखिए ताकि विषम परिस्थिति में जहां पे आप बिल्कुल 100 नंबर को 181 को 1090 को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ऐसा जो बहुत रेयर है, तो और आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और समय बहुत कम हो पा रहा है, तो आप पेरेंट्स जो है बिल्कुल कमीशन में शिकायत दर्ज करने से पीछे ना हटे। आप ये ना सोचे कि चलो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी के बारे में बोल दूंगी तो मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप इस कमीशन में अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपनी बेटी की तो क्षति कर ही दी, आप दूसरे की बेटियों को भी कहते हैं आप इसी परिस्थिति में जाओ। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मंचलों का जो हरकत हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि हम अपनी बेटी तुम नहीं संभालोगे तो हम दूसरे के बेटा को क्या संभालेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, मदर्स बोलती हैं हम अपनी बेटी को ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे के बेटे को कैसे करेंगे।
1: सही बात है,
0: क्यों नहीं करेंगे, हमारी बेटी भी है और दूसरे का बेटा भी किसी का बेटा है, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े। उस सोच को पे चोट करने की जरूरत है।
1: सही बात है, तो ये था मैसेज
0: जी। उसके साथ मैं मैसेज पे आऊंगी, रूम टू रीड का रेडियो एपिसोड चलता रहता है, तो अगला एपिसोड हम लोगों का बुली पे भी आएगा, बुलिंग पे और कैसे बदले, गर्ल्स को बुली की समझ कैसे होनी चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। और अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी सवाल होता है तो सुनो शारदा के फोन पे हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए और हम लोग आपके पास आंसर के साथ आएंगे।
1: बहुत बढ़िया जानकारी,
0: यस,
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पे जोड़ने के लिए और बहुत सारी बातें की आपने। आशा करता हूँ कि आपकी दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जो है वो लाभ उठाएंगे। आज हमने खासतौर से बात की जब आप सड़क या रास्ते पर पैदल चल रही हो तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते वक्त क्या करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में हो तो क्या करें, जब आप अकेले रात में टैक्सी या ऑटो ले रही हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा कर रहा हो तो क्या करें, अलग अलग राज्यों में उनके अपने फोन नंबर्स हैं, उनको आप अपने पास रखें और सुरक्षा कीजिए अपने पास रखें, घबराई ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पार्टी के दौरान सतर्क रहें, होटल में टिकने पर सावधानी बरतें। तो ये हमारे साथ आज साझा कर रही थी अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं जाते जाते हमारी वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ते हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमारा वो दो माध्यम है, एक तो फोन के जरिए से और दूसरा इंटरनेट के जरिए से। तो हमारा फोन नंबर है 01204060205 और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुनिए 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए सुनो शारदा पर अपनी अगले प्रोग्राम के लिए। नमस्कार,
2: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं हम?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म लें, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: बिले बिले बिले बिले।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: आज हम लोग एक ऐसे पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, पता नहीं आपने सुना जरूर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आज मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है रेणुका। रेणुका, आपने सुना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में?
2: हाँ जी, सुना है।
1: सुना है, और क्या सुना है? उनका कुछ और भी पढ़ा है, इसके पहले भी कुछ पढ़ा है?
2: हाँ जी, उन्होंने सरस्वती वंदना लिखी है।
1: कौन सी सरस्वती वंदना?
2: वीणा
1: वरदे वीणा वादिनी वरदे। अच्छा, हाँ, ये स्कूल में आज भी गाया जाता है, है ना?
2: हाँ जी, गाया जाता है,
1: खूब गाया जाता है। तो वरदे वीणा वादिनी वरदे आप लोग सुनते रहे होंगे सरस्वती पूजा के दिन, सरस्वती वंदना के रूप में इसको बाकायदा आप गाते भी रहे होंगे। लेकिन नहीं याद होगा कि ये निराला जी की लिखी हुई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस इतना ही जान लो कि एक छायावाद इसको काल का नाम बोला जाता है, युग है जिसमें चार बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उस युग के कवि हैं। उनमें पहला नाम अगर मैं लूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार महत्वपूर्ण कवि उसमें गिने जाते हैं। और भी लोग हैं, लेकिन इन चार को स्तंभ कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऋतुएं बहुत प्रिय थी, बहुत से ऋतुओं पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने वसंत पर भी लिखी हैं, उन्होंने वर्षा ऋतु पर भी बहुत सी लिखी है। वर्षा पर तो वो नाम ही लेते हैं बादल राग। बादल राग इंटरनेट से खोज के पढ़ लीजिएगा, बादल राग। वर्षा पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं बहुत सी, और उन बहुत सी कविताओं में जिक्र आता है बादल राग का ज्यादा, लेकिन वसंत ऋतु भी उन्हें उतना ही प्रिय है। ध्वनि कविता वसंत ऋतु से संबंधित है, तो ऋतुओं को बहुत पसंद करते थे और ऋतुओं पर कविताएं लिखते थे, तो इसको ऋतु वंदना भी कह सकते हो, जैसे सरस्वती वंदना वैसे ऋतु वंदना। NCERT ने इस पर एक कार्यक्रम पहले बनाया हुआ है जिसका नाम है ध्वनि और काव्य मंजरी नाम से, तो उसका एक अंश जो गाया है वह भी आप सुन लीजिएगा।

0: और उसको सुनने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ी सी कविता को पढ़ने के ढंग पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कविता जब तक हम लोग ठीक से पढ़े नहीं तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो उसको पढ़ करके देखते हैं। और जब मैं पढ़ूं तो रेणुका यह मत सोचना कि यही सबसे आदर्श है, इससे अलग भी तरीके हो सकते हैं और वह भी उतना ही अच्छे ढंग से कन्वे हो रहा होगा, उतनी अच्छे ढंग से अर्थ हम शायद संप्रेषित कर पा रहे होंगे। जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को पढ़ते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है?
1: कि कवि जी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी ना होगा उनका अंत,
0: अभी नहीं अंत होगा, क्यों कहा है? आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है कि आपका जो अभी अंत नहीं होगा तो क्यों नहीं अंत होगा?
1: क्योंकि जिस इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, नया जोश या उमंग हो, उसका अंत अभी नहीं हो सकता, उसका अंत कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता।
0: वाह बहुत बढ़िया, तो तुम्हें भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, कोई कितना भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, है ना?
1: जी।
0: तो बाधाएं रुकावटें तो आती रहती होंगे, तो तुम्हारा उस वक्त मन कहता है नहीं, निराला को याद करती होगी, इस कविता को याद करती होगी, नहीं?
1: जी।
0: तो लगता है कि अरे अभी तो मेरा अंत नहीं होना चाहिए। साथियों मैं थोड़ा सा बता दूं कि निराला जिस समय कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था, एक शुरुआती दौर था, तो उस शुरुआती दौर में निराला के कवित्व को या कवि रूप को सब लोगों ने सहर्ष नहीं स्वीकारा था, आसानी से नहीं स्वीकारा था। कोई भी बहुत ही संघर्ष के बाद कुछ बनता है, चाहे कवि हो या कोई और रूप हो, तो हर रूप बड़े ही संघर्ष के बाद बनता है। निराला भी उतने ही संघर्षशील थे उस समय, और वो संघर्ष के समय की कविता है जब शुरुआती दौर में आलोचकों ने आसानी से उनके कवित्व को नहीं स्वीकारा था। तो कहीं ना कहीं इसमें भाव जो आ रहा है वसंत ऋतु का तो है ही, उसमें यह भाव भी आ रहा है कि जो मैं है मेरा है, ये जो मेरा शब्द आ रहा है, ये जो कवि का मेरा है, कवि का जो मैं है, वो बार बार कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि वह जो लिखता पढ़ता रहा है, वह जो कवि है, वह अपने आप में विश्वास है उसको, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई निराश नहीं कर सकता, उसको कोई उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे

0: वो आलोचक हो चाहे कोई और हो, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता है। वो जो ठान चुका है वो करेगा। और इस कविता को पढ़ करके आपके मन में भी यही बात आ रही है कि हम जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं। ठान लिया कि करना है तो कर लेंगे। तो अब इस कविता को थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ो कि जैसे शुरुआत ही कवि कह रहा है कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब मेरे वन क्यों कहा होगा भाई? उसका कोई जंगल है क्या? यानी कवि ने कोई जंगल खरीद रखा है? नहीं ना, तो फिर क्या हो सकता है?
1: मेरे वन, वन मतलब जीवन।
0: हाँ, यानी यहाँ कोई अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वन रूपी मेरा जो मन है, है ना, जो वन रूपी मन है, मेरा जीवन है। मेरे वन में, मेरे जीवन में, मेरे वन वन रूपी जो जीवन है उसमें अभी तो वसंत आया है। यानी अभी तो कलियां खिल रही हैं, अभी तो खुशबू बिखेर रही हैं, तो अभी नया नया नए नए पत्ते आ रहे हैं, लाल लाल कोंपले आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, पूरा सुगंधित वातावरण है। तो ये खिला हुआ खिलने का मौसम है। तो इस खिलने के मौसम में अंत की बात हम कैसे सोच सकते हैं? तो अंत तो अभी नहीं आएगा। तो कहीं वो मन में ये महसूस कर रहा है, वो उत्साह है उसके मन में, उसको विश्वास है, और वो लोगों को कहीं एक चुनौती भरा कह सकते हो संकेत भी कर रहा है, चुनौती भरा निर्देश भी दे रहा है कि नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसका अंत नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो टक्कर ले रहा है, जमाने से टक्कर ले रहा है, और जमाने से टक्कर लेते हुए कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई अंत कर सके। तो अभी इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कवि ने मेरा अंत क्यों कहा होगा, और कह रहे हैं वसंत की बात लेकिन फिर भी मेरा कह रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस वसंत में वह अपने जीवन को देख रहा है, एक पूरा रूपक चल रहा है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। अब सारा कह रहा है कि कैसा है ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो कलियां दिखाई दे रही हैं, ये पत्ते जो दिखाई पड़े, ये क्या है? यही तो उसके शरीर है। ये जो वसंत है उसका शरीर ये है। यानी ये जो हरापन है, ये जीवन में जो आर्द्रता है, ये जो ताजगी है, अभी तो उस महसूस कर रहा है उस ताजगी को। तो इस ताजगी का अंत वह भी अपने सामने नहीं देख सकता। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रति, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कवि ने कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब प्रत्यूष का मतलब क्या होता है?
1: खुशनुमा।
0: नहीं, खुशनुमा सुबह हो सकती है, उषा इसमें जुड़ा हुआ है ना। प्रत्यूष का मतलब होता है भोर की सुबह, सुबह जो होती है ना, जो भोर यानी बहुत सुबह होने से पहले पहले का समय, सूर्योदय से पहले पहले का समय। तो अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, यानी अभी तो उसने लिखना शुरू किया है, अभी तो उसके जीवन में तरह तरह के सपने आने शुरू हुए हैं, और उन सपनों को वह कैसे छोड़ देगा? कह रहा है कि निद्रित कलियों पर, जो सोए हुए कलियां अभी दिखाई पड़ रही है ना, उनको वह प्रत्यूष मनोहर, उनको सुबह दिखा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है लेखक। ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आसपास के पूरे वातावरण में एक बदलाव की बात कर रहा है कि पूरे वातावरण में वो बदलाव लाने में सक्षम होगा। वो चाहता है कि ये बदलाव, ये ताजगी, ये जो ऊर्जा उसके भीतर दिखाई पड़ रही है, ये ऊर्जा, ये ताजगी, ये बदलाव उसके आसपास के माहौल में भी हो। तो सारी कलियों को खिलने की बात कर रहा है, सिर्फ अपने खिलने की बात नहीं कर रहा है। तो वसंत में जैसे पूरा का पूरा जंगल, ऐसा नहीं है कि एक फूल खिल जाएगा और पूरा का पूरा नहीं खिलेगा, पूरा का पूरा बागीचा खिल उठता है। तो उसी तरह से ये पूरे के पूरे बदलाव की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देश में बदलाव की बात कर रहा है, केवल एक की बात नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जन जन में बदलाव, पूरे देश में ये ऊर्जा हो, पूरे देश में ये ताजगी हो, ये माधुरी हो, ये खिलापन हो, ये खिलने का मौसम जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये खिलने का मौसम पूरे देश में दिखाई पड़े, कोई एक नहीं, हर चेहरा उतना ही ताजगी भरा हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, फिर वो कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्र आलस लाल सा खींच लूंगा मैं। चाहे अगर कहीं भी कोई आलस्य होगा, किसी भी फूल में खिलने में कहीं आलस्य होगा, तो उस फूल की, उस तंद्रा को, उसकी निद्रा को वो खींच लेगा, उसमें कहीं कोई लालस दिखाई पड़ेगा। किसी व्यक्ति में अगर कोई लालसा होगी, कोई ऐसी इच्छा होगी जो नहीं पूरी हो, वो ऐसी उन सबको वो कहीं खींच लेगा। वो कहने का मतलब कि उसमें वो ताकत है, उसमें वो क्षमता है कि हर कह सकते हो संघर्ष के समय को एक ऊर्जावान, ताकतवर, चुनौती भरे समय में बदल सकता है, ताजगी भरे समय में बदल सकता है। मुझे एक बात बताओ, बगीचे में तुम लोगों ने फूलों की सेवा की है कभी, देखा है?
1: हाँ जी।
0: तो कुछ फूल जब नहीं खिलते हैं तो क्या करते हो तुम लोग?
1: उसमें हम लोग पानी डालते हैं।
0: पानी डालते हो और क्या करते हो? खाद डालते हो।
1: हाँ जी।
0: खाद डालते हो, सड़े गले पत्तों को हटाते हो, यानी उसकी निद्रा को तुम दूर करते हो। यही है उसकी निद्रा को दूर करना, मतलब उसमें ताजगी लाना। मतलब कि अगर वह नहीं किन्हीं कारणों से वह रोग युक्त हो गया है, तो उसको रोग मुक्त करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे समय में, हमारे जमाने में, हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं किसी तरह की कमी दिखाई पड़ रही है, कोई ऊर्जा किन्हीं कारणों से नहीं दिखाई पड़ रही है, वो ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है, तो किसी भी कारण से अगर उनमें आलस्य दिखाई पड़ रहा है और वो थोड़े निराशा भरे समय में जी रहे हैं, तो उस निराशा को आशा में बदलने की क्षमता कवि में है। वो खुद कहता है कि मैं बदल सकता हूँ और उसको एक आशावान, ऊर्जावान, एक खिलने के समय में बदल सकता हूँ। सभी लोगों के चेहरों में वो ताकत और ऊर्जा होगी, ऐसा विश्वास। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब हमारे भीतर विश्वास होगा तब हम दूसरों को विश्वास दे पाएंगे। किसी दिन तुम उदास होती होगी तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरे लोग भी तुम्हें देखकर उदास ही हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो तुम अगर निराश रहोगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है ना। या तुम्हारी मम्मी किसी दिन निराश होगी तो तुम भी थोड़ी उदास हो जाती हो, होता है ना। तुम्हारी कोई मित्र ऐसी होती होगी तभी तुम्हें ऐसा लगता होगा। यानी एक व्यक्ति की उदासी या निराशा दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ लेखक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कह रहा है कि नहीं, जब तक वह अपनी तंद्रा नहीं दूर करेगा, अपने आलस्य को नहीं दूर करेगा और अपने अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास उसके नहीं आएगा, तब तक वह दूसरों में विश्वास नहीं भर सकता है, विश्वास नहीं उनको जगा सकता है। और इसको उसने रूपक किस चीज़ का लिया है, बसंत का रूपक। तो बगीचे के रूपक से, बसंत के रूपक से उसने यह बताने की कोशिश की है। ये छायावाद जिसका मैंने नाम लिया था, छायावाद के समय में जितने भी कवियों ने लिखा है ना साथियों, चाहे प्रसाद जी की कविता पढ़ना, चाहे पंत जी, उन लोगों ने प्रकृति का ऐसा ही उपयोग किया है। उन्होंने अपनी बात, मैं की बात, मैं मतलब अपनी बात, जो अपनी बात कहनी है, अपने ढंग से जो सोचता है व्यक्ति, अपना जो सपना देखता है, वो सब कई बार हम प्रकृति के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। ये भी एक शैली है, एक तरीका है। तो जैसे तुम किसी और के बहाने से अपनी बात को कह दो, तो उसी तरह से यहाँ भी सीधे सीधे ना कह करके कई बार हम किसी के बहाने से कहते रहे, ये एक शैली है। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कविताओं को पढ़िएगा तो देखिएगा कि कवि कौन सी शैली का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वह किसी के बहाने से कह रहा है, क्या वह सीधे सीधे कह रहा है, तो किस समय की कौन सी विशेषता रही है, यह भी आपको समझ आती चली जाएगी धीरे धीरे। और जब पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपकी हासिल होती चली जाएगी। तो इस पूरी कविता में द्वार, अब अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। अब और एक ध्यान देने की जरूरत है, मेरे वे जहां आनंद। अब मेरे कौन भाई, कौन है उसका आनंद, सवाल उठता है ना मन में, है वह मेरे जहां आनंद। तो द्वार दिखा दूंगा उनको, अनंत अनंत इच्छाएं, यानी बहुत सारी इच्छाएं जो उसकी है, जहां पर कहां है, जिस द्वार के से खुल करके जाएगा। तो मैं सारी तंद्रा को, निद्रा को, जहाँ कहीं निराशा है, जहाँ कहीं तंद्रा है, उन सब को, निद्रा को हम किस में बदल देंगे, एक ऐसा दरवाजा दिखा देंगे जहाँ से सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, वो सपने दिखाई पड़ते हैं, वो सपने जो पूरे हो रहे हैं, वो सपने जो हम पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो हम अपने कोशिश करें तो पूरे हो सकते हैं। हम थोड़ा सा अपने को सचेत रखें, सजग रखें। तो सजगता, सचेतता कैसे हमें अपने उस मंजिल तक पहुंचाती है, उस जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य और मंजिल को कैसे पाने में मदद करती है, ये कवि ने इस कविता में कहने की कोशिश की है। सजगता और सचेतता और एक तंद्रा को छोड़ भूलना और सपने को देखना, ये बहुत ज़रूरी। सपनों के देखने की बात तो और लोगों ने भी बहुत से की है, किसने की है बताओ?
1: महात्मा गांधी जी ने।
0: सपने की, सब लोग कहते हैं कि सपने देखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से, है ना। और किसने, एक बहुत नाम लिया जाता है, वैज्ञानिक है हमारे देश के,
1: अब्दुल कलाम।
0: हाँ, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी सपनों को बात कही है। बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं, तो सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, यानी कुछ लक्ष्य लेके चलना, कुछ मंजिल तय करके चलना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम लक्ष्य विहीन होंगे, अगर हम मंजिल विहीन होंगे, हाँ तो हमारे रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुमको पता है कि किसी दिन रास्ते पर या तो यूं ही घूमते हुए चलो, वो भी मज़ा आएगा। उसमें तुम्हारा लक्ष्य होता है कि तफरी करना, घूमना, रास्ते के पेड़ों को देखना, रास्तों को जानना। लेकिन जब मंजिल तय होती है तो तुम्हारे चरण जो है थोड़े तेज हो जाते हैं, तुम्हारे पांव जो है और तेज चलने लगते हैं और आगे आगे चलने पड़ते हैं। तो ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं, कविता पढ़ते हुए कुछ चीज हमारे, कुछ बातें हमारे ध्यान में आई होंगी, जैसे अभी न होगा मेरा अंत। अब इसकी दूसरी पंक्ति कोई बनाओ तो जरा, कविता के साथ खेलो, शब्दों की के साथ खेलो, कोशिश करो। अभी अभी इसने तो दूसरी पंक्ति जोड़ी है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ इस खेल को करो और अगली पंक्ति जोड़ने की कोशिश करो। अंत के साथ कितने तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? सबसे पहले क्या करो कि अंत के साथ कौन कौन से तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों की एक लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ, और उन शब्दों को फिर अपने सपनों के साथ पिरो दो। कोशिश करो, है ना, कंत हो सकता है, संत हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनंत तो कवि ने भी प्रयोग किया है, है ना, मंत्र हो सकता है, बहुत मंत्र हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि तुक वाले जो शब्द हैं, उन तुक वाले शब्दों को पहले एक सूची बनाओ और उन तुक वाले शब्दों को फिर अपनी इस लाइन में, अपनी पंक्ति में डालने की कोशिश करो। ये खेल करके देखो, बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे शब्द तुम सीख पाओगे इससे, शब्दों की लयात्मकता को समझ पाओगे, शब्दों के अर्थ को भी समझ पाओगे, यानी शब्द भंडार भी बढ़ेगा, अर्थ भी समझ में आएगा और भाव भी समझ में आएगा। बहुत सी चीजों पर आप बात कर, साथ ही एक और कोशिश करो कि अगर मान लो गांधी कहते कि अभी न होगा मेरा अंत, तो क्या करते, क्या निराला की तरह ही बात करते गांधी, या कुछ और कहते, क्या कहते?
1: वे कहते अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मुझे है जो मेरी इच्छाएं अनंत।
0: हाँ,
1: अभी तो मुझे बढ़ना है।
0: कहाँ बढ़ना है, क्या करना है? देश को आजाद कराना,
1: देश को आजाद करना।
0: तो इसको जरा कविता में बांध करके कोशिश करो, करना है ना, कविता बनाने की कोशिश करना। इसी तरह से एक जैसे कोरोना समय है, अभी कोरोना के काल में हम लोग अगर उत्साह से भर करके और बहुत ही मेहनत से, बहुत सचेतता से, संघर्ष से जो लगे हुए हमारे वॉरियर, जिसको हम लोग कह रहे हैं डॉक्टर हैं, या और भी, केवल डॉक्टर नहीं है, नर्स हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कहते होंगे, अभी हम किसी भी तरह से थकेंगे नहीं, तुम चाहे लाख कोशिश करो कोरोना। तो उनके लिए एक कविता बना के कोशिश करो, उनके लिए एक पैराग्राफ लिख के कोशिश करो, अनुच्छेद बनाओ, और तुम देखो वो कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे, है ना?
1: अभी तो मुझे कोरोना से लड़ना है। घर पे बैठ के हमें कोरोना को हराना है।
0: तो हराने के लिए क्या करना होगा? अभी तो हम सबको बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण रखेंगे, किसी का उत्साह खत्म नहीं होने देंगे, किसी को हारने नहीं देंगे, किसी को हारने, जो मन से हार जाता है ना, वो शरीर से भी हार जाता है। तो मन से नहीं हारने देने की कोशिश करनी है इस समय में, तो अलग अलग क्षेत्रों में। अब यही बात अगर मान लो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ रहा है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वो पर्वतारोही क्या करेगा? अरे आओ, कोई असंभव शब्द नहीं है इस तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे शब्दकोश में, अपने साथियों को क्या कहेगा? असंभव नहीं है, एकदम चलते चलो आगे, अब बस जरा सा रह गया है, अब जरा सा रास्ता रह गया, यही कहेगा ना? वो नहीं कहेगा कि एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में झांकने की कोशिश करो, चाहे वो पर्वतारोही का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स का देख लो, चाहे वैज्ञानिक की दुनिया देखो, चाहे संगीतकार की दुनिया देखो, तो संगीत की दुनिया भी और हमारे मजदूर और किसानों की दुनिया भी देखो, जो मजदूर किसान कैसे कहेंगे, चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो वो हारते नहीं है। एक बार फसल खराब हुई, दूसरी बार फिर लगाते हैं और फिर फसल लगाते हैं और फिर से फसलों का इंतजार करते हैं, फसलों के पकने का इंतजार करते हैं, फिर से काटते हैं, तो वो किसी भी हाल में हारते नहीं है, चाहे स्थितियाँ कितनी भी खराब हो। तो इन सारी चीजों पर हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो, हरे हरे ये पात शब्द आया है, ये हरे हरे शब्द क्यों आया है भाई? दो बार क्यों कहा होगा कवि ने, सोचा है कभी आपने? पुष्प पुष्प आया है, पुष्प पुष्प से खींच लूंगा तंद्रा लस, पुष्प पुष्प से वाला जो आया है क्यों आया है, हरे हरे ये पात क्यों आया है?
1: हरे हरे एक तो हमारा ये अलंकार होता है।
0: क्या अलंकार होता है?
1: यामक अलंकार।
0: यामक तो तब होता है जब एक शब्द का दूसरा अर्थ हो और दूसरे शब्द का दूसरा, ये पुनरुक्ति है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। लेकिन पुनरुक्ति तब होता है जब दो बार आए हैं वही शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होगा। दोनों हरे का शब्द, हरे का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब एक हरे का अर्थ दूसरा होता तो यमक हो जाता। ठीक है, यहाँ पर वह बात नहीं कही है। अब कोमल गात शब्द आया है, कोमल क्या है यहाँ पर, गात क्या है? गात मतलब
1: गात यानी शरीर,
0: शरीर। और कोमल,
1: कोमल जो है वो उसकी विशेषता।
0: अगर मान लो तुम्हें ये कविता लिखनी होती तो कोमल की जगह कौन सा शब्द लिखती, कौन सा विशेषण लिखती?
1: सुंदर शरीर।
0: सुंदर, और भी और कुछ लिखती? बहुत सारी चीजें, निर्मल शरीर होता, वाह बहुत सुंदर निर्मल शरीर। तो ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। अब एक और काम करना, अभी तो बहुत से समय है रेणुका, आप भी करो, अपने साथियों को भी बताओ, और आप लोग भी साथियों ये जरूर करना कि वसंत पर और भी बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। कुछ पुरानी कविताएं उठा लीजिए, किताबें उठा लीजिएगा, पत्रिकाएं उठा लीजिएगा, उन पत्रिकाओं से वसंत संबंधी कविताओं का एक संचयन तैयार करिए, खुद वसंत संबंधी संचयन उन कविताओं को चुनिए जो आपको पसंद हो। और एक और काम करिएगा कि उन कविताओं को जब संचयन करिए तो आप ये भी करिएगा कि उसकी भूमिका भी लिखिएगा, छोटी सी, छोटी सी भूमिका। अब उसमें क्या लिखोगे, ये लिखो कि ये कविताएं क्यों पसंद है, पहली बात तो ये आ जानी चाहिए। फिर इन कविताओं में 10 कविताएं या 20 कविताएं आपने चुनी तो उन 10 और 20 कविताओं में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको एक पैराग्राफ में लिख दो। फिर ये भी लिख सकते हो कि कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, कौन से नए क्षेत्रों के बारे में जानने के मिले और कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, यह भी लिखना। तो कोशिश करो और आप पाओगे कि एक बड़ी सुंदर सी किताब आपने खुद बना दी है, खुद एक चयन तैयार कर दिया है, और ये चयन आप अपने साथियों को भी सुनाइए, अपने अध्यापकों को भी सुनाइए और अपने आस पड़ोस वालों को भी सुनाइए। मैं समझती हूँ कि आप वसंत को सुनाते सुनाते आप वसंत से परिपूर्ण हो जाएंगे और ताजगी, उत्साह, और ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज ध्वनि पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस कविता के संदर्भ में और भी बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है।
2: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। श्रोताओं, जीने के साधन इस धरती ने हमें कई रूपों में दिए और ये सभी साधन हमारे शरीर को या कहें पूरे जीवन को ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा यानी वो शक्ति जो हमें कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। पर ये ऊर्जा कहाँ से आती है? कौन है जो निरंतर इस धरती के जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा से शराबोर रखता है? आइए सुने सूरज सभी ऊर्जाओं का स्रोत।

0: तूने
1: क्या किया? मैंने
0: सब कुछ खराब कर दिया। तू बस रुक, मैं अभी देखती हूँ तुझे।
1: विवेक भैया जल्दी आओ इधर प्लीज।
2: अरे क्या हुआ मानव, क्यों चिल्ला रहे हो?
1: देखो ना भैया, दीदी हमेशा मुझे डांटती रहती है और आज भी डांट रही है।
2: अरे तुम लोग शांति से नहीं बैठ सकते, तुम लोगों की वजह से मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तुम लोग लड़ो मत यार।
0: देखो ना भैया, इसने मेरी पेंटिंग पर पानी गिरा दिया है। मैंने बहुत मेहनत से ये पेंटिंग बनाई थी।
3: बनाई थी पेंटिंग,
0: ये बाहर जाकर नहीं खेल सकता।
2: माना बहुत गलत बात है।
1: क्या भैया?
2: अब इन दोनों को बाहर भी नहीं भेज सकता, बाहर इतनी धूप है, बीमार पड़ जाएंगे। और फिर मम्मी पापा ने बाहर जाने से मना किया है। ऐसा करो मानव, तुम इससे दूर जाकर अपनी वाटर गन से खेलो, जाओ।
1: ठीक है।
3: दीदी दीदी मुझे पानी दे दो ना।
0: तुम फिर मुझे परेशान करने लगे, अभी तो तुमने पानी पिया था। जाओ फ्रिज से खुद पानी ले लो, मुझे पेंटिंग बनाने दो।
1: अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ।
0: क्या किया? पानी गिरा दिया, गिलास से पानी भी नहीं पी सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा, इधर आ।
1: भैया भैया देखो ना, देखो दीदी मुझे मारने आ रही है।
2: भाई तुम लोग थोड़ी देर तक आराम से नहीं बैठ सकते? अब क्या हुआ?
0: देखो ना भैया, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया।
2: अरे तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हो? चलो मानव तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में चलो। और सृष्टि तुम यहाँ बैठ कर अपना काम करो, चलो चलो।
1: ठीक है।
4: x square plus y square is equal to z
3: भैया, भैया,
2: हाँ,
3: भैया आप कह रहे थे ना कि चिल्लाने से ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमें ये ऊर्जा आती कहाँ से है?
2: मानव हमें ऊर्जा खाने से मिलती है, और यही ऊर्जा हमारे काम करने की क्षमता होती है। ठीक है
3: तो भैया इसमें चिंता की क्या बात है? मैं फिर से खाना खा लूंगा जिससे मुझमें फिर से ऊर्जा आ जाएगी।
2: मानव तो तुम फिर से सृष्टि को तंग करना शुरू कर दोगे? तुम नहीं सुधरने वाले। सोचो अगर तुम्हारी तरह सभी लोग इस तरह ऊर्जा बेकार करने लगे तो खाने की तो कमी हो जाएगी।
3: खाने की कमी? भैया क्या बात कर रहे हो? अभी यहाँ तो पूरी रसोई खाने की चीजों से भरी हुई है। अच्छा भैया ये बताओ कि खाने में एनर्जी कहाँ से आती है?
2: मानव तू नहीं मानेगा, सवाल पे सवाल किया जाएगा। ऐसा ऐसा करो चुपचाप खेलो तुम, मुझे कुछ काम करना है भाई, काम करने दो चुपचाप।
3: अच्छा ठीक है। भैया ये बताओ ना कि खाने में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: मानव सुनो, हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? सब्जी, फल, दाल, चावल आदि। इसको खाकर हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि मिलते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा आती है। और ये सब पेड़ पौधों से मिलता है। इस सभी में ऊर्जा सूर्य से आती है, समझे? अब काम करने दो मुझे।
3: भैया भैया आपकी दीवार पर चिपक ली।
2: मानव तो क्या हुआ भाई, चुपचाप काम नहीं करने दे सकते मुझे?
3: अच्छा भैया ये बताओ कि इस छिपकली में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: अरे मानव ये भी तो हमारी तुम्हारी तरह एक जंतु है, ये शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरती है, जिससे उसे सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, समझे?
3: भैया देखो छिपकली तो गई पर बड़ी छिपकली आ गई, सृष्टि दीदी। अब इसको यहाँ से भगा दो बस।
2: मानव दीदी से ऐसे बात करते हैं? अब तू डांट खाएगा और मार भी। ऐसे बात करते अपनी दीदी से? सृष्टि तुम्हारी पेंटिंग पूरी हो गई?
0: अभी कलर किया है, सूखने के लिए रखी है।
2: अच्छा
0: मैं इस मानव की बातें सुन रही थी इसलिए यहाँ आ गई।
3: अच्छा
2: अरे बातें करना तो इसकी आदत है, बस एक ही सवाल के पीछे पड़ गया है कि जीव जंतुओं और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है। अच्छा सृष्टि तुम ही बताओ कि जीव जंतु और पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
0: हाँ मैंने अपनी किताब में इसके बारे में पढ़ा तो है। हर प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, इस प्रकार शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर और मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, है ना?
3: ओहो दीदी मैं और भैया इतनी जरूरी बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गई तुम।
0: क्या कहा तुमने?
3: नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तो भैया आप बताओ ना कि पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है?
2: मानव तुम शोर मचाकर हमेशा अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हो, सृष्टि इसी के बारे में तो बता रही थी पर तुम सुनने को राजी नहीं हो। चलो मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ।
3: ठीक है।
2: पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करके ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं और ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। समझे?
0: इस क्रिया में क्या होता है भैया?
2: अच्छा एक काम करते हैं, बताने से पहले तुम दोनों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखोगे? चलो चलो चलो, पहले बालकोनी में चलते हैं, चलो एक चीज, बहुत बढ़िया चीज।
0: अरे भैया यहाँ तो बहुत धूप है।
3: अरे भैया आपको दिखाने वाले थे ना, दिखाओ ना।
2: देखो ना ये पौधा देख रहे हो?
0: हाँ?
2: ये पौधा सूर्य की रोशनी में रखा है, पापा इसे रोज पानी देते हैं इसीलिए ये हरा है। ये पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी की सहायता से बनाता है। वो सीढ़ियों पर रखा हुआ पौधा देख रहे हो, वो वाला?
0: हाँ भैया।
2: वो जो सूख गया है?
0: हाँ, हाँ।
2: वहां पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और क्योंकि उसे किसी ने पानी नहीं दिया इसलिए भोजन ना बनने से ये पौधा सूख गया है।
3: बेचारे पौधे की रसोई में सूरज की गैस ही नहीं जली तो वह खाना कैसे बना पाता।
2: बहुत जल्दी सीख जाते हो तुम।
0: भैया अगर इस तरह सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो हम सभी जीवों को भोजन की कमी होने से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अब मैं समझी, हमें ऊर्जा भी सूरज के कारण ही मिलती है।
2: वाह सृष्टि वाह, पापा सही कहते हैं भाई, अब तो मैं भी कह सकता हूँ कि लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर, क्यों? हमारी ऊर्जा ही नहीं सृष्टि बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही तो है। अगर ये सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही ना होता।
3: पर भैया एक बात समझ में नहीं आई।
2: वो क्या?
3: आप ये बताओ कि मेरा खिलौना कैसे कार्य कर रहा है, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है और इसमें भी सूर्य की कोई भूमिका है?
2: मानव है भी और नहीं भी।
3: वो कैसे?
2: देखो मानव, तुम्हारा ये खिलौना बैटरी से चलता है, है ना? और बैटरी को तुम किससे चार्ज करते हो?
3: बिजली से।
0: और ये बिजली कहाँ से आती है?
3: बिजली घर से।
2: बिजली घर से तो हमारे घर तक आती है। बिजली बनती है कोयले, पानी की शक्ति, प्राकृतिक गैस या बायोमास इत्यादि से, समझे?
0: और इन सब में सूर्य की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भूमिका है।
3: पर भैया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला बनाने में सूर्य की क्या भूमिका है?
0: हाँ ये सभी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है।
2: कोयला और पेट्रोलियम आदि मरे हुए पौधों और समुद्री जीव जंतुओं से बने जो करोड़ों वर्ष पहले जमीन में दब गए थे।
0: और इतना तो तुम्हें पता ही है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का ऊर्जा स्रोत सूर्य ही है।
3: हाँ अब कुछ कुछ बात समझ में आई है।
2: वाह मानव, आई गई बात समझ में। अच्छा जरा देखो दूसरे कमरों की लाइट तो बंद है, देखे आओ जाओ।
3: भैया दीदी से कह दो ना, वो देख लेगी।
2: मानव शशि तुम ही देख लो जरा।
0: हाँ भैया मैं जाती हूँ। देखो तो बाथरूम और स्टोर की लाइट खुली है।
3: पर भैया यहाँ तो अंधेरा रहता है, इन्हें तो जलने दो।
2: नहीं मानव, अगर जरूरत नहीं हो तो इसे बंद कर दो। हमें ऊर्जा को बचाने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें एक बात और बताऊं मानव, हमारे ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जरूरत इन पर भी बढ़ती जा रही है।
3: लेकिन भैया सूर्य तो है ना, पेट्रोलियम और कोयले के भंडार भी बढ़ते रहेंगे।
2: अरे ऐसा नहीं है मानव, नहीं है ऐसा। कोयले और पेट्रोलियम के भंडार कम होते जा रहे हैं और वैसे भी इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं।
3: पर भैया हमारी लाइट बंद करने से कितनी ऊर्जा बचेगी?
2: मानव यदि हमारी तरह प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को बचाने की बात सोचे तो छोटी छोटी बचत से हम ऊर्जा के भंडारों को और अधिक दिनों तक चला सकते हैं।
0: कुछ समझ में आया मानव?
3: कुछ कुछ तो आया है। चलो छोड़ो दीदी, हम दोनों ना टीवी देखते हैं।
2: चलो चलो जाओ तुम लोग टीवी देखो।
0: तुम टीवी चालू करो, मैं आती हूँ।
3: दीदी, अरे दीदी कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ, देखो मेरा मनपसंद कार्टून आ रहा है।
0: अरे आ रही हूँ ना। मानव कार्टून बहुत देख लिया, जरा दूसरा चैनल लगाओ।
3: नहीं मुझे कार्टून ही देखना है।
0: तुम हमेशा यही देखते हो मानव, मुझे रिमोट देता है या नहीं?
3: नहीं मैं नहीं दूंगा।
0: मुझे दे।
3: नहीं दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें नहीं देता रिमोट। और हाँ मुझसे लड़कर ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो।
0: ठीक है मैं जा रही हूँ, अकेले टीवी देखती हूँ।
3: हाँ

0: सृष्टि सृष्टि देख रहे तो दरवाजे पर कौन है?
1: अभी देखती हूँ।
0: कौन है सृष्टि?
1: अब पोस्टमैन अंकल है।
2: बेटा सूर्य प्रकाश जी का पत्र है, क्या वो घर पे हैं? उनके इस कागज पर हस्ताक्षर चाहिए।
1: अच्छा अंकल एक मिनट, विवेक भैया।
0: हाँ?
1: पापा का पत्र है, इधर आना।
0: अच्छा नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते बेटा।
0: कहाँ पर साइन करना
2: है? यहाँ पर करते हैं। ठीक है बेटा।
1: अच्छा अंकल, जब घंटी बजी थी तो आवाज निकली थी, ये भी तो विद्युत से जुड़ी है ना, तो विद्युत ऊर्जा का नुकसान नहीं हो रहा इस घंटी को बजाकर?
0: अरे मानव, अभी तक तुम्हारे दिमाग में ऊर्जा के ही सवाल चल रहे हैं क्यों? देखो घंटी का स्विच दबाने पर ही आवाज निकलती है, मतलब ये है कि जब जरूरत है तभी बज रही है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है।
1: तो जलते हुए बल्ब से कौन सी ऊर्जा निकल रही है?
0: बल्ब से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में बदलती है। अच्छा मानव, क्या तुम्हें मालूम है कि विद्युत ऊर्जा के हमारे घर तक आते आते ही 30% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है?
1: वो कैसे?
0: वो ताप में बदल जाती है।
1: तो इसके हिसाब से एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है और ऊर्जा का क्षय नहीं होता।
0: बिल्कुल, यही तो वैज्ञानिक रूप से सत्य है।
1: कौन है?
3: हेलो बेटा, कैसे हो?
1: अरे पापा मम्मी।
3: हाँ बेटा, जल्दी से पानी पिला दे।
1: हाँ। कितनी गर्मी थी बाहर।
3: हाँ हाँ हाँ भाई।
1: ये लो पापा पानी।
3: थैंक यू।
1: ये लो मम्मी,
4: ठंडा है बेटा।
1: हाँ जी।
3: हाँ आज बहुत गर्मी है, सूर्य गर्मी उगल रहा है भाई। अब सृष्टि और दिन भर आज क्या किया?
1: पापा मैंने एक पेंटिंग बनाई है, अभी लाती हूँ।
3: हाँ जरूर जरूर, जल्दी लेके आओ।
1: पापा ये देखो कैसी है।
3: अरे वाह, ये तुमने बनाई?
1: हाँ पापा।
3: अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वेरी गुड। अब बाय द वे, ये मानव और विवेक कहाँ है भाई?
1: विवेक भैया अपना होमवर्क कर रहे हैं और मानव उन्हें तंग कर रहा है।
3: As usual।
1: लो ये भी आ गया। पापा सीढ़ियों पर रखे उस गमले को आप बालकनी में क्यों नहीं रखते? बेचारा सूख गया है।
3: अरे बेटा मैंने बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है ना, वो सीढ़ियों पर ना चढ़ने के कारण मैं उसे पानी देना भूल जाता हूँ, घुटनों में दर्द होता है ना।
1: लेकिन पापा इसके अलावा वहाँ सूर्य की रोशनी भी तो बिल्कुल नहीं पहुँचती ना।
3: हाँ देख नहीं रहे हो, इसी सूर्य से तो परेशान हूँ, बाहर आग उगल रहा है, दिन में जाना कितना मुश्किल है। पता नहीं कब तक आग बरसाएगा ये।
1: पापा आपको मालूम है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे।
3: अरे वाह वाह वाह मानव, तुम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। ये सब तुम्हें किसने बताया भाई?
1: आज विवेक भैया ने मुझे ऊर्जा के बारे में बताया था।
3: अच्छा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड।
1: लेकिन पापा ये सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है?
3: ये विवेक ने नहीं बताया। अब देखो बेटा मैं अभी बहुत थक गया हूँ, वो आज शाम को हमारे यहाँ साइंस क्लब वाले शर्मा अंकल आ रहे हैं।
1: अच्छा,
3: शाम को उनसे पूछ लेना।
1: फिर तो ठीक है, मैं भी खेलने जाता हूँ। ठीक है
4: ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना।
1: हाँ, हाँ, आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा।
3: वसुधा भाई मानव तो अच्छे अच्छे सवाल पूछने लगा है।
5: विवेक और सृष्टि के साथ रहकर होशियार हो गया है अपना मानव, और खुद भी कुछ न कुछ सोचता रहता है।
3: हाँ मुझे खुशी है कि हमारे तीनों बच्चे मेरे जैसे समझदार हो गए।
5: हमारे जैसे।
3: अच्छा ओके ओके।
0: पापा पापा कैसा रहा भाई, बाहर बहुत गर्मी है ना?
3: बहुत गर्मी है। पागल हो।
0: पापा आपकी ये चिट्ठी आई थी,
3: दिखाया। हो हो हो हो, इस पत्र का इंतजार तो मैं 2 दिनों से कर रहा था।
1: अच्छा।
6: अरे इस समय कौन आ गया? आप देखिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं काम वाली ना हो।
3: मैं देखता हूँ। अरे शर्मा जी आए हैं।
7: नमस्कार सूर्य प्रकाश।
3: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए शर्मा।
6: नमस्कार भाई साहब।
7: नमस्कार भाभी जी। ये सब बच्चे कहाँ हैं?
1: हम यहाँ पर हैं।
7: अरे
3: अभी खेल कर आए हैं।
7: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: बैठिए ना
7: जी। शुक्रिया। हाँ तो बच्चों बताओ, आज आप लोगों ने दिन भर में क्या किया खेलने के अलावा?
1: अंकल मुझे भैया और दीदी ने ऊर्जा के बारे में बताया।
7: अच्छा, तो तुमने ऊर्जा के बारे में क्या जाना?
1: यही कि सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
7: वेरी गुड। अच्छा, तुमने ये सोचा कि सूर्य में ये ऊर्जा कहाँ से आती है?
1: लेकिन भैया ने ये तो बताया ही नहीं।
7: अच्छा विवेक, तुम बताओ।
0: सूर्य का मुख्य ईंधन हाइड्रोजन है और इसके तापमान के कारण इसमें चलने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फिजन है।
7: गुड, वेरी गुड। अच्छा सृष्टि, तुमको मालूम है कि नाभिकीय संलयन क्या है?
8: नहीं अंकल।
7: ठीक है, मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम एवं कुछ अन्य पदार्थ मुख्यतः पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है।
1: इतना ज्यादा?
7: हाँ, इतने अधिक ताप के कारण सूर्य के अंदर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर आपस में टकराते हैं और हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम बना लेते हैं। हाँ, और इस प्रक्रिया में 5,000,000 टन ऊर्जा निकलती है। 5,000,000 टन। अधिक दबाव और तापमान के कारण नाभिकों का आपस में मिलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है।
1: ये क्रिया रोज होती है?
7: ये अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है सृष्टि, और 1 सेकंड में लगभग 42,00,000 टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है।
0: पर अंकल, ये क्रिया कब से चल रही है?
7: ये करीब 5 अरब सालों से चल रही है विवेक, तभी से सूर्य प्रकाश देता आ रहा है, और जानते हो अगले 10 अरब सालों तक और चमकेगा।
1: और उसके बाद क्या होगा?
7: देखो मानव, जब ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगा तो इसके अभाव में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का भंडार हर पल कम होता जा रहा है।
0: अच्छा।
7: और जब ये भंडार समाप्त हो जाएगा तब सूर्य आज की तरह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सकेगा।
0: ओ,
1: तो क्या उस समय सूर्य नहीं रहेगा?
7: देखो मानव, हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त होने पर वो फूलने लगेगा और उसका आकार इतना अधिक हो जाएगा कि वो पृथ्वी को निगल लेगा।
0: अच्छा।
7: और कुछ समय के पश्चात वो चमकना बंद कर श्वेत तारा बन जाएगा।
1: लेकिन अंकल, सूर्य अभी भी तो एक तारा ही है ना?
0: हाँ, वो तो अभी भी वो तारा ही है, लेकिन अभी सूर्य काफी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। श्वेत तारा बनने के बाद वो ऐसा नहीं करेगा।
1: ओ, अगर सूर्य तारा है तो बाकी तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते?
7: मानव, ऐसा है कि तारे तो हमेशा आकाश में रहते हैं, लेकिन सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते।
1: अच्छा।
7: अच्छा सूर्य प्रकाश जी, अब चलता हूं।
8: बाय अंकल।
4: चलो बच्चों, खाने के टेबल पर आओ।
8: अभी आते हैं।
6: चलो चलो चलो।
1: वैसे मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है?
4: जब टेबल पर आओगे तो पता चल जाएगा। आओ फटाफट।
1: चलो चलो चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो चलो।
4: रोटी लो सृष्टि।
1: वाह मम्मी, क्या खाना बनाते हो आप।
4: दाल खत्म करो जल्दी।
1: दाल।
3: अरे खाओ ना मानव।
1: अच्छा, वैसे पापा, कल रविवार है ना? मैं कल ना आपके साथ सुबह घूमने चलूंगा, ठीक है?
8: हाँ हाँ पापा, मैं भी।
3: पक्का?
1: पक्का।
3: कल सुबह देखते हैं।
1: ठीक है।
3: मानव। ए मानव। अरे उठो, घूमने नहीं चलना है
8: क्या? पापा सोने दो ना।
3: तुम तो कह रहे थे कि घूमने जाऊंगा।
1: अरे आधे घंटे बाद चलेंगे ना।
3: आधे घंटे नहीं रुकूंगा मैं, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं तो अभी जा रहा हूँ। हाँ
8: अच्छा ठीक है, मैं अभी उठता हूँ।
3: हाँ जल्दी करो, वरना मैं और सृष्टि जा रहे हैं।
8: नहीं नहीं रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ अभी।
3: सृष्टि जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो।
8: सृष्टि दीदी जरा मेरी फुटबॉल भी ले आना, ठीक है?
3: अरे ले लेना सृष्टि।
8: अच्छा अच्छा, अब चलो ना जल्दी।
3: भाई सुबह का मौसम बहुत सुहाना है ना बच्चों?
8: हाँ सच में पापा, गनीमत है कि हमारे पास में ही ये सुंदर और बड़ा पार्क है।
3: हाँ भाई, पार्क तो हम लोगों के लिए वरदान है, वरना हम लोग शुद्ध हवा लेने कहाँ जाते।
8: बिल्कुल।
1: पापा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ?
3: खेलने? हाँ जाओ, मगर देखो किसी से लड़ना नहीं है।
1: अच्छा ठीक है। हाँ। पापा थोड़ी देर वहाँ बेंच पर बैठते हैं, तब तक मानव अपना खेल खत्म कर लेगा।
3: हाँ गुड आइडिया, चलो।
1: हाँ
9: हाँ, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं।
10: बहुत सुंदर है ना।
9: गुलाब देखो ना कितना प्यारा। अरे ये मानव अभी तक नहीं आया, पता नहीं खेल रहा है कि लड़ रहा है। और ये देखो सूरज महाराज भी निकल आया।
10: और निकलते ही अपना कमाल दिखाने लगे।
11: हाँ। अरे दीदी कमाल देखना था तो हमारा फुटबॉल का खेल देखती।
10: मानव दूसरा कमाल देखना है तो वो देख, लाल लाल आग का गोला देख।
11: वो क्या?
10: वो
9: अरे वो देखना, वो सूर्य है देख। हाँ। कितना बड़ा, कितना लाल, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका रंग भी बदलता जाएगा।
10: पापा हमें सूर्य के अंदर का भाग क्यों नहीं दिखाई देता?
9: अब सृष्टि आँखों से सिर्फ सूर्य का प्रकाश मंडल दिखाई देता है। अरे उसके अंदर केंद्र का तापक्रम बहुत अधिक है, इसलिए हम केंद्र को नहीं देख सकते हैं।
10: पापा सूर्य की सतह का तापक्रम कितना अधिक है?
9: बेटा उसके केंद्र में नाभिकीय प्रक्रिया के फलस्वरूप केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है।
11: इतना ज्यादा?
9: हाँ, और जो केंद्र से सतह की ओर आते आते करीब 6000 डिग्री सेल्सियस रह जाता है।
11: लेकिन पापा सूर्य के अंदर और क्या क्या है?
10: कल अंकल ने बताया तो था सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में है। इनके अलावा यहाँ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन और दूसरी गैसेस भी उपस्थित हैं।
11: पापा क्या सूर्य भी पृथ्वी की तरह घूमता है?
9: हाँ, सूर्य भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की तरह चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में औसतन 27 दिन का समय लगता है।
11: अच्छा।
9: हाँ, लेकिन ये स्थिर नहीं है। ये घूर्णन अवधि विषुवत रेखा पर तो 25 दिन और ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़कर 31 दिन हो जाती है।
10: ऐसा क्यों पापा?
9: बेटा ऐसा उसकी संरचना के कारण होता है। अब देखो तापक्रम अधिक होने के कारण सूर्य पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं है, सब कुछ गैस अवस्था में है, इसलिए सूर्य के विभिन्न भाग अलग अलग रफ्तार से घूमते हैं।
10: तो सूर्य गैस का गोला है। पर पापा सूर्य बड़ा है या हमारी पृथ्वी?
9: बेटी सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,33,000 गुना अधिक है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसको ढकने के लिए हमारी पृथ्वी जैसी 109 और पृथ्वियों की आवश्यकता होगी।
11: अच्छा।
9: खैर चलो अब घर चलते हैं।
10: हाँ, चलो चलो मानव जल्दी घर चलो।
11: हाँ मैं अपना सामान ले लूँ, एक मिनट।
9: हाँ चलो चलो, मैं फुटबॉल ले ले भाई इसकी जल्दी से, चिल्लाएगा शाम को। देखता हूँ मम्मी। अरे आप लोग घूम भी आए?
10: हाँ।
0: सृष्टि कौन से पार्क में गए थे तुम लोग?
10: अरे अपनी कॉलोनी में जो बड़ा पार्क है वहीं।
0: अच्छा भाई बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने।
10: मानव फुटबॉल खेल रहा था और मैं पापा के साथ घूम रही थी। पता है आज मैंने दिन में तारा देखा।
0: हट, मुझे पागल बना दिया क्या?
10: अरे सच में सूर्य तारा ही तो है।
0: अच्छा।

0: ये नाश्ता मिला है। तो फिर मैंने बेकार में मेहनत करके इतनी ऊर्जा बर्बाद की सुबह से।
1: अरे नहीं मम्मी, आपको भी तो ऊर्जा उसी सूरज से मिलती है ना। आप उसकी आराधना करो और वो आपको और ऊर्जा देगा।
0: ये तो फिर से शुरू हो गया।
2: लेकिन वसुधा, कह तो ये बिल्कुल सही रहा।
1: हाँ।
2: नाश्ते के लिए मुझे तुम्हारा नहीं बल्कि सूर्य का धन्यवाद करना चाहिए।
0: बिल्कुल करना चाहिए, और कल से उन्हीं से नाश्ता मांगना भी चाहिए।
2: अरे तो गड़बड़ हो गई भाई।
0: वहीं से मांग लीजिएगा नाश्ता।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हार

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश
2: हाय नमस्कार मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Oh, Sharda!

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।

0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Arun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
6: प्लीज।
5: थैंक यू।
7: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
5: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
6: अली का शरारती है।
7: वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस के नहीं है, लेके जाओ घर पे।
2: नमस्ते दीदी।
1: तब आशा वाली दीदी आई तो बोली, क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है। तो बोली कि लेके चलोगी सरकारी हॉस्पिटल पे? तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ। तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
3: इस दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में। उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और विभाग है, जैसे पंचायती राज है, जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं, उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग, कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें। तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए। पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं, ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है, और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
2: माहवारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की माहवारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
1: माहवारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी माहवारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
2: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही माहवारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। माहवारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।